0: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति पारमेलिन आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पारमेलिन से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। समारोह सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित किया जाएगा। पहली खेप में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित मेथेनॉल बांग्लादेश के ढाका स्थित पानगांव बंदरगाह ले जाया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश देश प्रोटोकॉल मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi and Swiss President

0: தேனிசை நிகழ்ச்சி கேட்டீர்கள். தொடர்வது சமஸ்கிருதத்தில் செய்திகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: இயம் ஆகாஷவாணி. சம்பிரதி வார்த்தாஹ ஸ்ரூயந்தாம் பிரவாசகஹ புனித த்ரிபாடி. अथ वार्ताः. अद्य नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पारमेलिन इत्यनेन सह द्विपक्षीय चर्चां करिष्यति. राष्ट्रपतिः पारमेलिनः अद्य प्रातः वरिष्ठैः अधिकारिभिः व्यापार नेतृभिः च युतेन उच्चस्तरीय प्रतिनिधि संघेन सह भारतस्य त्रिदिवसीयायाम् आधिकारिक यात्रायाम् आगमिष्यति. श्रीमोदी तथा राष्ट्रपतिः पारमेलिनः च व्यापार निवेशः, विज्ञानं, प्रौद्योगिकी, नवान्वेषणं, गतिशीलता, संस्कृतिः, जनसंपर्कः इत्यादिषु विस्तृत क्षेत्रे

शतरंज का खेल हो या जिंदगी का, शॉर्टकट या जुए के रास्ते हमेशा बर्बादी की ओर ले जाते हैं। सच्चा धन वही है जो ईमानदारी और कड़े परिश्रम से कमाया जाए।

0: एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी वीसी प्रमोद। नमस्कार प्रमोद।
1: नमस्कार मनोज एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग टू यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 5th of October. मनोज, आपकी जो आपने बात कही मुझे बहुत अच्छा लगा अबाउट जुआ कि शॉर्टकट शॉर्टकट ही होते हैं। हमारे केरला में एक सेइंग है जिसे बोलते हैं सीधा रास्ता सीधा ही होता है।
0: एकदम जी हाँ जी हाँ। तो मुख्य समाचारों के साथ शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापार जगत के प्रमुख लोगों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पारमेलिन व्यापार और निवेश, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार, आवागमन संस्कृति तथा दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी राष्ट्रपति पारमेलिन से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन इससे पहले इसी वर्ष निजी यात्रा पर भारत आए थे। ये उनकी पहली राजकीय यात्रा है।
1: Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal will flag off the first international cargo voyage from Dibrugarh, Assam today. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma will also virtually attend the ceremony, which is scheduled for 11 a.m. at the Bogi Beel Terminal. This maiden voyage will carry methanol from Assam Petrochemicals Limited, departing Bogi Beel for Pangaon Port in Dhaka, Bangladesh. The shipment will utilize National Waterway 2, on the Brahmaputra and the Indo-Bangladesh protocol route. This marks the first cargo consignment to sail from Dibrugarh to a foreign port since independence, signifying a major step in reviving Assam's river trade and strengthening inland waterway connectivity in the northeast.
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। डॉक्टर सिंह इस वर्ष 13 मई को आयोजित 16वीं पेंशन अदालत की सफलता की गाथाओं को उजागर करने वाले छोटे पोस्टर जारी करेंगे। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि 2017 में शुरू होने के बाद से अब तक आयोजित 16 पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। इसलिए ऐसे मामलों के समाधान की सफलता दर 71.79% रही है।
1: Union Ministry of Youth Affairs and Sports, through its national youth platform My Bharat, organized the drug-free walk for Nasha Mukt Yuva across 150 locations nationwide yesterday. Over 1 lakh youth and citizens participated in the event. This initiative, part of the broader Nasha Mukt Yuva for Vikasit Bharat campaign, aimed to raise awareness about the harmful effects of substance abuse and promote healthy, addiction-free lifestyles. Participants engaged in various awareness activities including 3-5 kilometer walks, street plays, slogan writing and heritage walks.
0: उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में आने वाले लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी विशाख जी और संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इनमें बरावन कला, सैथा, जेहटा, मॉल रोड और

0: फैजुल्ला गंज शामिल है। अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए तत्काल 10 नावें तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। नावों के जरिए घर घर राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए रात में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। दाऊदनगर में एक अतिरिक्त नियंत्रण कक्ष भी बनाया जा रहा है ताकि लोगों की शिकायतों और जरूरतों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों को गोमती नदी के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी करने तथा मौके पर मौजूद रहकर राहत और बचाव कार्यों की देखरेख करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: The Ministry of Road Transport and Highways will organize a two-day Chintan Shivir in Gujarat from today. The conclave will bring together senior representatives from the center, states and implementing agencies to deliberate on key issues concerning the development and delivery of highway infrastructure in the country. The inaugural session of the Chintan Shivir will feature addresses by Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari and Minister of State Ajay Tamta and Harsh Malhotra.
0: भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के लिए पांचवें दौर की वार्ता आज कनाडा की राजधानी ओटावा में शुरू होगी। दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देना है। पांच दिन की ये वार्ता 9 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इससे पहले चौथे दौर की वार्ता पिछले महीने 18 सितंबर को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान समझौता वार्ता वर्ष के अंत तक पूरी करने का लक्ष्य तय किया था। दोनों नेताओं ने ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की थी। दोनों नेताओं ने कहा था कि व्यापक व्यापार समझौता दोनों देशों की साझेदारी को मजबूती देगा और वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 4,65,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। वर्ष 2024-25 में भारत और कनाडा के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 8.66 अरब करोड़ डॉलर रहा। इस दौरान कनाडा को भारत का निर्यात 4.22 अरब करोड़ डॉलर का था।
1: In sports, India concluded its campaign at the 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya with 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze, finishing fourth in the overall standings. India's 2026 Asian Games campaign produced a series of landmark achievements across disciplines. The defining feature of India's campaign was its clean sweep of gold medals in the men's and women's cricket, kabaddi and hockey. The Aichi Nagoya Asian Games concluded yesterday, bringing more than 2 weeks of exciting sporting action to an end.
0: ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कल राजधानी के विभिन्न स्थानों पर सभी मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए विशेष शिविर लगाए गए। ये शिविर जंगपुरा, नई दिल्ली, रोहतास नगर, आदर्श नगर, नजफगढ़, मादीपुर, बदरपुर, बादली, शाहदरा, संगम विहार, चांदनी चौक, ग्रेटर कैलाश, आम्बेडकर नगर, कस्तूरबा नगर, कालकाजी, घोंडा और कुंडली में लगाए गए। अगला विशेष शिविर कैंप 11 अक्टूबर को लगाया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम बदला है। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर होगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली की एक और खबर
1: जी।
0: दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं के लिए KYC अभियान चलाए जा रहे हैं। जल बोर्ड ने बताया कि अभियान के अंतर्गत अधिकृत कर्मी घर घर जाकर उपभोक्ताओं की जानकारी अपडेट कर रहे हैं। साथ ही बोर्ड ने उपभोक्ताओं को सतर्क करते हुए अपील की है कि KYC के लिए आने वाले किसी व्यक्ति को पैसे या उपहार न दें। ऐसी मांग होने पर तुरंत 1916 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही OTP, आधार या अन्य संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें और जानकारी केवल अधिकृत अधिकारी को ही दें।
1: आपने दिल्ली की बात की, मैं चेन्नई ले चलता हूं आपको।
0: जी हां, ले चलता
1: हूं। Thousands of migratory waders and shorebirds have arrived in the Muttukkad Nemmeli estuarine habitats ahead of the annual bird season. The birds travel thousands

0: आप वो ले लो
1: ले लो डन. The second edition of the SECON IAF Marathon was conducted at many locations on the 4th of this month across India to commemorate the valor and supreme sacrifice of the Paramveer Chakra awardee flying officer Nirmaljit Singh SECON. In Chennai, Air Force Station Avadi organized a marathon in three categories, namely 21, 10 and 5 kilometer run, appropriately named after three indigenous air combat platforms of the IAF, Tejas, Dhruv and Prachand. Over 750 participants from the Air Force Station Avadi, including family members and children, enthusiastically participated in the event, donning the message of run, soar and inspire.
0: सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत मुंबई शहर जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्वस्थ जीवन, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी के संदेश दिए गए. रैली का आयोजन जिला कलेक्टर अंचल गोयल के निर्देशन में किया गया. कलेक्ट्रेट परिसर से रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर शिवानंद लंगड़ापुरे ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. साइकिल सवार कलेक्ट्रेट से गेटवे ऑफ इंडिया होते हुए मरीन ड्राइव स्थित NCPA तक गए, जहां रैली का समापन हुआ. सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक प्रभावी और सुलभ बनाना तथा अधिकारियों और कर्मचारियों की सामाजिक पहलों में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है. मुंबई की एक और खबर. अपर्याप्त वर्षा के कारण 10% पानी की कटौती जारी रहने से नवी मुंबई में जल संकट और भी गंभीर होता जा रहा है. नवी मुंबई नगर निगम NMMC ने निवासियों से जल संरक्षण का आग्रह किया है. ये देखते हुए कि बारिश की कमी के कारण मोरबे बांध में संग्रहित जल का केवल 74% ही वर्तमान में उपयोग योग्य है. रोडपाली, कलां, बोली और अन्य क्षेत्रों के निवासियों ने अपर्याप्त जल आपूर्ति की शिकायत की है. NMMC ने कम वर्षा का कारण जलवायु संबंधी कारकों को बताया है, जिनमें अलनीनो और हिंद महासागर द्विध्रुव IOD शामिल है. स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए नगर निगम ने 9 सूत्रीय सलाह जारी की है, जिसमें नागरिकों से जल की बर्बादी से बचने, केवल आवश्यकता पड़ने पर ही पानी का उपयोग करने, वाहनों को धोने के लिए पीने योग्य पानी का उपयोग न करने, टैंकों को ओवरफ्लो होने से रोकने, आवश्यकता न होने पर नल बंद रखने और लीक हो रही पाइपलाइनों की मरम्मत करने का आग्रह किया है. डेवलपर्स को भी सलाह दी गई है कि वे पानी का उपयोग केवल अनुमत उद्देश्यों के लिए ही करें.
1: Moving on to Bengaluru, Jawaharlal Nehru Planetarium in Bengaluru celebrated World Space Week, announcing educational programs for the students. The director of the Jawaharlal Nehru Planetarium, Dr. B.R. Guruprasad, informed during the inaugural program yesterday that satellites play a vital role in our daily life. Almost 16,000 satellites are revolving around the Earth that ensure safety and security of our life. He said that communication satellites NAVIC, Astrosat, Chandrayaan, Mars Orbiter Mission of India makes telecommunication and navigation easier. The chief guest of the inaugural program, M.R. Raghavendra, outstanding scientist and director of ISRO Telemetry, Tracking and Command Network in Bengaluru, spoke about the vision of Dr. Vikram Sarabhai, considered the father of the Indian space program.
0: और अब कोलकाता पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं. त्योहारी मौसम से पहले पश्चिम बंगाल राज्य मंत्रिमंडल की आज नबन्ना में बैठक होने वाली है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मामलों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे. सभी मंत्रिमंडल सदस्यों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे. प्रस्तावित बैठक में उद्योग सीमावर्ती जिलों में सीमा सुरक्षा बल के लिए भूमि आवंटन और विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने से संबंधित एजेंडा पर चर्चा होने की संभावना है. इसके अलावा भारत और उरुग्वे के बीच आगामी अंतर्राष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, जो अगले मंगलवार को कोलकाता के युवा भारती क्रीड़ांगन सॉल्ट लेक स्टेडियम में होने वाला है. इस प्रस्ताव के अंतर्गत पिछले साल लियोनेल मेसी के मैच के दौरान टिकट धोखाधड़ी का शिकार हुए दर्शकों को मुफ्त टिकट दिए जा सकते हैं.
1: Moving on to Hyderabad, a Nasha Mukt Yuva Walkathon was held yesterday in Hyderabad to spread awareness among young people.

0: people about the dangers of drugs and substance abuse. The walkathon was organized by My Bharat Telangana under the Ministry of Youth Affairs and Sports along with the National Service Scheme, NSS. The walk began at the historic Charminar and ended at the Government City College. Rajya Sabha Member of Parliament, Dr. K. Lakshman, a healthy drug-free youth is essential for building a developed India by 2047. Many young people took part in the walkathon with great enthusiasm.
1: और अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। दिल्ली में आज मुख्य रूप से आसमान साफ रहने की संभावना है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आसमान साफ रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आम तौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं वीसी प्रमोद से।
0: दैट्स राइट मनोज, चेन्नई इज लाइकली टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 26 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 34 डिग्री सेल्सियस। Bengaluru is forecast to experience generally cloudy sky with light rain or thunder showers. The minimum temperature is expected to be 21 degrees while the maximum will reach 31 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with possibility or development of thunder and lightning. Temperatures are expected to range from 23 degrees to 34 degrees Celsius.
1: और आज विश्व आवास दिवस है। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व आवास दिवस मनाता है। इस दिन का उद्देश्य सभी लोगों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त आवास के अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। विश्व आवास दिवस 2026 की थीम है
0: एडिक्वेट हाउसिंग फॉर ऑल,
1: यानी सभी के लिए पर्याप्त आवास। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में 3 अरब से अधिक लोगों के पास पर्याप्त आवास की सुविधा नहीं है, जबकि 1 अरब 10 करोड़ से अधिक लोग अनौपचारिक बस्तियों में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पर्याप्त आवास केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि मानव गरिमा, सुरक्षा और बेहतर जीवन का आधार है। इसके लिए सुरक्षित भूमि अधिकार, बेहतर नियोजित और मूलभूत सुविधाओं से युक्त बस्तियां तथा सामाजिक, सार्वजनिक और किफायती आवास जैसे विकल्प जरूरी हैं।
0: That's right. Today is the 5th of October, which is also celebrated as World Teachers Day across the globe. The day celebrates teachers and recognizes their valuable contribution to education and society. It also marks the anniversary of the adoption of the 1966 ILO UNESCO recommendation concerning the status of teachers.
1: और अब हम उन घटनाओं, महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करते हैं। आज 5 अक्टूबर है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।
0: मैं आपको ले जाऊं 1789 पे। द वुमेन्स मार्च ऑन वर्सेल्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन दिस डे इन 1789। द मार्च लेड टू द रॉयल फैमिली लीविंग वर्सेल्स फॉर पेरिस द फॉलोइंग डे।
1: 1905 में आज ही के दिन विल्बर राइट ने लगभग 24 मील की उड़ान 39 मिनट में पूरी की। ये विमानन के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1908 में आज ही के दिन बुल्गारिया ने ऑटोमन साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।
0: On this day, 1910, Portugal was proclaimed a republic after a revolution overthrew the monarchy of King Manuel II. And on this day, October 5th, 1947, US President Harry S. Truman delivered the first televised presidential address from the White House, speaking about food conservation and aid to Europe.
1: आज ही के दिन 2011 में भारत ने आकाश टैबलेट लॉन्च किया, जिसे दुनिया के सबसे सस्ते टैबलेट में से एक के रूप में पेश किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को कम कीमत पर कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना था। इसे खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में

0: डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। और अब याद करते हैं महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
1: बिल्कुल, तो इन डेथ एनिवर्सरीज मनोज, आज मेरे पास है विश्व मेहरा
0: जी,
1: एंड ये राज कपूर के मामा जी थे, तो उनका नाम मामा जी ही हो गया
0: जी। जी,
1: तो जो भी आप मूवीज देखोगे उसमें टाइटल्स में इनका नाम नहीं आएगा, मामा जी करके आएगा
0: जी।
1: He was one of the lesser known but fascinating figures from the golden era of Hindi cinema. He was closely associated with Raj Kapoor and RK Studios, and he worked not only as an actor but also as a production manager, witnessing the evolution of Kapoor's family legendary film empire, RK Films. He appeared in films including Aag, Barsaat, Anadi, Satyam Shivam Sundaram, Prem Rog, Ram Teri Ganga Maili. But we have a song from the movie Teesri Kasam, Chalat Musafir.

0: या तो कनिया आ रे बर्फी के सब रस ले लिया रे बिंदड़े वाले मुनिया
1: और आज पुण्यतिथि है भगवती चरण वर्मा की
2: जी।
1: वे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश के शफीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने लेखन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया। कवि के रूप में भगवती चरण वर्मा के रेडियो रूपक महाकाल, कर्ण और द्रौपदी जो 1956 ईस्वी में त्रिप थगा के नाम से एक संकलन के आकार में प्रकाशित हुए उनकी विशिष्ट कृतियां हैं। यद्यपि उनकी प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी का आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में अपना महत्व है। उनकी मुख्य रचनाएं चित्रलेखा, भोले बिसरे चित्र, सीधे सच्ची बातें, सबही नचावत राम गुसाई, अज्ञात देश से आना आज मानव का सुनहला प्रात है, मेरी कविताएं, मेरी कहानियां, मोर्चाबंदी, वसीयत आदि हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके उपन्यास चित्रलेखा पर एक फिल्म बनी थी
2: जी।
1: आइए सुनते हैं उस फिल्म का एक गीत।

0: किरण कण हूँ। ये काव्य रचना है राम कुमार वर्मा की। आज पुण्यतिथि है राम कुमार वर्मा की। उनका जन्म 15 सितंबर 1905 को सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां अंजलि, हिमहास, निशीथ, जौहर, चित्तौड़ की चिंता आदि हैं। राम कुमार वर्मा एकांकिकार, आलोचक और कवि हैं। इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक है। इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया गया था।
1: टुडे इज द बर्थडे ऑफ रवि वर्मन, एन इंडियन सिनेमेटोग्राफर, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर एंड राइटर। ही प्रेडोमिनेंटली वर्क्स इन तमिल, मलयालम एंड हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज। ही बिगैन हिज करियर दो इन मलयालम सिनेमा एंड ही इज नोन फॉर बीइंग एन ऑनररी मेंबर ऑफ द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस ऑन पास। His career in cinematography began after working as an office boy in a film production company where he trained under the cinematographer Ravi K. Chandran. In fact, Manoj, he got the Best Cinematographer National Film Award for Poniyin Selvan. Uska gaana hai.
0: Hamare paas samay bahut kam hai.
1: Ji ji, bilkul bilkul.
0: फिल्म जग्गा जासूस के लिए रवि बर्मन को श्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन प्राप्त हुआ था। आइए सुनते हैं उस फिल्म का एक गीत।

आज जयंती है पंडित राम चतुर मलिक की। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1902 को बिहार में हुआ था। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद धमार शैली के प्रसिद्ध गायक थे।

0: Today is also the birth anniversary, in fact, birthday of Adil Hussain. We have a dialogue from his film. वो सुन ले।
1: दिल्ली में मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइएगा।
2: ईमानदार लोग मेरे किसी काम के नहीं हैं ऑफिसर। जब आदत बदल जाए, तो मैसेज कर देना।
3: और अब समय आपसे विदा लेने का हो गया है अब अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यही समाप्त करने की
0: That's right. Stay tuned for coming up next. समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन हैव अ सुपर्ब डे नमस्कार
4: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे मौसम विभाग ने आज कर्नाटका केरलम तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे राष्ट्रपति पहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं दोनों नेता व्यापार निवेश विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार आवागमन संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी
5: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए

0: का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत EFTA प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। EFTA देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहमला से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
2: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथानॉल भेजा जा रहा है। 2 नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रूगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसा ही रहने की उम्मीद है। उधर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए तत्काल 10 नाव तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात एक जिला एक उत्पाद पहल की।
4: मिजोरम के अधिकारियों ने बताया है कि लुंगलेई जिले में केले की खेती करने वालों ने केंद्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत केले से बने उत्पादों से लगभग 3,78,00,000 रुपए कमाए हैं। लुंगलेई के लिए केले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के तौर पर चुना गया है। राज्य सरकार इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है और केले से चिप्स, जूस और खाने की दूसरी चीजें बनाने के लिए प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही है। लुंगलेई की उपायुक्त नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को तब चुना गया जब जिला प्रशासन ने बागवानी विभाग के साथ मिलकर जिले की खेती की क्षमता का अध्ययन किया और पाया कि इस इलाके में केले की अच्छी पैदावार होती है।
5: हमारे जिले में केले की खेती की बहुत संभावना है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसे नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना शुरू किया है जो केले से बनी चीजों जैसे केले का जूस, चिप्स और केले के फूल में मूल्य संवर्धन का काम कर रहे हैं। हम उन्हें ट्रेनिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग में भी मदद दे रहे हैं।
4: उपायुक्त ने ये भी कहा कि प्रशासन किसानों को केले से बने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए बड़े सरकारी कार्यक्रमों में स्टॉल भी लगाता है। फिलहाल लुंगलई जिले के लगभग 17 गाँवों में केले की

0: ती हो रही है जिसमें करीब 300 से 400 परिवार शामिल हैं। आइजोल से आइजक जोरमसांगा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। इटली के अखबार कोरियेरे देला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया।
2: रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ मच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इसराइल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इसराइल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इसराइल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
3: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों, विशेष रूप से IED विस्फोटों से प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं।
4: बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद इन विस्फोटों में हमने महत्वपूर्ण अंग गंवा चुके दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निशुल्क शिविर लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए शिविर स्थल पर आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार रायपुर।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देशभर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद प्रियंका। भारत द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण, विदेश मंत्री ने कहा, हाल में भारत सिर्फ पैरवी करने से परे जाकर थोड़ा और अधिक जुड़ा है। जीएसटी में गिरफ्तारी के अधिकार पर लगाम, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि जीएसटी परिषद की इस सप्ताह बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लिया जा सकता है और किसी भी गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी को अनिवार्य किया जा सकता है। भारत 20 और देशों में डिफेंस विंग स्थापित करेगा, बढ़ेगा रक्षा निर्यात। हिंदुस्तान ने लिखा है, इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। कैप्टन स्मिथ दुनिया के हीरो, प्रधानमंत्री मोदी संग इसराइल आमंत्रित। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की भारतीय पायलट स्मिथ से फोन पर की गई बात और सराहना को दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है। उधर दैनिक भास्कर ने कैप्टन स्मिथ पर हमला करने वाले को पायलट के बयान को दिया है। को पायलट ने कबूला, विमान क्रैश कराना चाहता था। जापान में संपन्न एशियाई खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अमर उजाला की सुर्खी है, भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 14 में रही बेटियों की भागीदारी, 24 साल बाद बेटों से आगे रही। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, गुजरात के महसाणा जिले में पेंशन के पैसों से 75 वर्षीय दिनेश भाई और उनकी पत्नी देविंद्रा बेन ने रेगिस्तान में तैयार किया जंगल। 5 बीघे में 5,000 से ज्यादा पेड़, हजारों परिंदों का घर बना।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Swiss President Guy Pamela in New Delhi today. Union Minister Sarbanand Sonowal to flag off first international cargo voyage from Dibrugarh in Assam this morning. IMD forecasts heavy rainfall in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. India and Canada to start fifth round of negotiations for their proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement in Ottawa today. Fly Dubai flight's Omani co-pilot tried to crash aircraft in Saudi desert after hijack attempt foiled. And India signs off with 85 medals after gold rush in cricket, hockey and kabaddi at Asian Games 2026 in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Pamela will hold bilateral discussions in New Delhi today. President Pamela will be on a 3-day state visit to India, accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and business leaders. Prime Minister Modi and President Pamela will review progress in bilateral cooperation across a wide range of areas, including trade and investment, science, technology and innovation, mobility, culture and people-to-people contact. The leaders will also exchange views on regional and global developments, including cooperation in multilateral fora. President Pamela will meet President

0: को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश ठेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை பாரதி ராமசுப்பன் அவர்களின் பாட்டு கேட்டோம். ஸ்ரீவித்யா ஆர் எஸ் ஐயர் அவர்கள் வயலின், கே அருண் பிரகாஷ் அவர்கள் மிருதங்கம்.
1: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला भारत के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति पाहमला का राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पाहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पाहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पाहमला से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित है। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध है।
3: इंडिया एंड रशिया हैव हिस्टोरिकली वेरी गुड रिलेशंस।
4: भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं, खासकर 1950 के दशक से। वह इतिहास भुलाया नहीं जा सकता। भारत के लिए सोवियत संघ एक ऐसा देश है जो कई तरह से हमारे साथ खड़ा रहा है, खासकर तब जब हमारी सुरक्षा और हमारी क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। ऐसे समय में जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमारे पड़ोसी देश में सैन्य शासन का समर्थन कर रहा था, रूस एक ऐसा देश था जिसकी विरासत ने कई मायनों में हमें आकार दिया है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भारत का रुख स्पष्ट किया कि वो इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। भारत का मानना है कि इसके लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता होगी और इस संबंध में बातचीत होनी चाहिए। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला भारत के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी साथ लाए हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी।
1: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत ईएफटीए प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ईएफटीए देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहमला से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
2: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथानॉल भेजा जा रहा है।

0: हैं। दो नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रुगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी।
2: दोनों देशों के अधिकारी अब समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से प्रगति के इच्छुक हैं। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। दोनों नेता नई दिल्ली में बैठक के दौरान ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए थे। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया था कि व्यापक व्यापार समझौते की रूपरेखा से दोनों देशों को स्थायी लाभ होगा और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 4,65,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने की साझा आकांक्षा को समर्थन मिलेगा। भारत और कनाडा के बीच 2024-25 में 8.66 अरब डॉलर का वस्तु व्यापार हुआ। भारत ने इस दौरान कनाडा को 4.22 अरब डॉलर का निर्यात किया। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इटली की अखबार कुरियरे दिल्ला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया।
3: रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ मच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इजरायल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इजरायल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इजरायल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध है।
4: भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं, खासकर 1950 के दशक से। वह इतिहास भुलाया नहीं जा सकता। भारत के लिए सोवियत संघ एक ऐसा देश है जो कई तरह से हमारे साथ खड़ा रहा है, खासकर तब जब हमारी सुरक्षा और हमारी क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। ऐसे समय में जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमारे पड़ोसी देश में सैन्य शासन का समर्थन कर रहा था, रूस एक ऐसा देश था जिसकी विरासत ने कई मायनों में हमें आकार दिया है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भारत का रुख स्पष्ट किया कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
5: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद

0: एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: இனிய பாடல்களுடன் உலா வந்தது சுகமான ராகங்கள். மீண்டும் சுகமான ராகங்கள் நாளை காலை 10:30 ஒலிபரப்பாகும். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे. इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी. एक रिपोर्ट.
2: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था. इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत ईएफटीए प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे. यह शिखर सम्मेलन भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है. ईएफटीए देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है. भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है. राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा. सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: इससे पहले राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया. वे आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे. 3 दिन की यात्रा पर राष्ट्रपति पामला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे. भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे. दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं. 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी. 4थे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी. इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब उसकी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी. नई दिल्ली में एक सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे. उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं. डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार तथा निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं. पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे. इसमें असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पगांव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा. मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा. आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे. इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है. आज नई दिल्ली में जर्मनी के नेताओं के साथ बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत रुक गई है. उन्होंने कहा कि विचाराधीन समझौता एक कठिन और गहन बातचीत के बाद तैयार हुआ है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए. उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और

राज्य की समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के माध्यम से दुनिया को सत्य, करुणा, मानवता और सद्भाव का संदेश दिया। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारेकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी

0: समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
1: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
2: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
3: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
2: There are rooms to operate from, both sides would do it.
0: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समझौते में लगभग 2 अरब लोगों और वैश्विक GDP के करीब 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। 4थे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पगांव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 71,992 पर और निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 22,450 पर था। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिन में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों, साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम अनुकूल होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
1: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां

0: बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
1: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
2: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
1: There are rooms to operate from, both sides would do it.
0: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया।
2: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा कवर होता है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया। इसमें असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाव बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा गया। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावास दिवस समारोह में श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
3: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को PPP मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
4: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक हो गया है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है।
3: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
5: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गांव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।
3: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। ये हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर airnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के

0: मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से ये साबित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। आरबीआई के नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइज के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म्ड फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। डेवलपमेंट से यमन कंफ्लिक्ट के ओर बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। मनीष शिवा, आकाशवाणी दुबई।
0: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा दोनों देश व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: நேரம் 2:30 ஆகாஷ்வாணி.
3: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
2: திரை கானம் கேட்கலாம். முதலில் டூயட் திரைப்படத்திற்காக SP பாலசுப்ரமணியம் சித்ரா பாடியிருக்கும் பாடல்.

0: రేపు ఉదయం 11:30 100.1 FM గోల్డ్ మల్లెపూదండలో వ్యాఖ్యానంతో కూడిన చిత్ర సంగీతం ప్రసారమవుతుంది. 100.1 FM గోల్డ్లో మనం ఇంతవరకు విన్నాం. కొద్ది క్షణాల్లో వార్తలు వింటారు.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాత్ మే ముకేష్ కుమార్. भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा ज्यूरिख एप्लाइड साइंसेज विश्वविद्यालय के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता में सहयोग के लिए समझौता किया गया. ये समझौते आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए. वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के लिए राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की. उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया था.
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया. ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है. यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है. इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे.
1: इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भेंट की. डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की. राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया. उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है.
3: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही

0: साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: राष्ट्रपति पामला शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत के इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे शीघ्र ही मंत्रिमंडल की स्वीकृति की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की पांचवें दौर की बातचीत करेंगे। इस व्यापार समझौते के दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। यह वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। यह याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोप के संबंध में दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। संचार मंत्रालय ने बताया है कि मई 2023 में शुरू हुए संचार साथी पोर्टल को 30 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा है। यह पोर्टल लोगों को अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन की जानकारी प्रदान करता है। उपयोगकर्ता इस पोर्टल से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन ब्लॉक भी कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ शिकायत करने वाले नागरिक संचार साथी पोर्टल के साइबर वॉरियर की तरह काम करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल, ऊंची कीमतें और खाद्य मुद्रा स्फीति तेजी से बढ़ रही है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: www.jnu.ac.in. Office of the Additional Director General of Foreign Trade, CLA, Ministry of Commerce and Industry, invites applications from retired central government officials for engagement as consultants on contract basis against 6 vacancies. Applicants should be below 64 years of age as on the closing date and should have retired at least in the level of a section head, FTDO or DGFT, senior secretariat assistant, assistant section officer or equivalent. Candidates should have relevant secretariat experience in areas such as audit, establishment and administration, pension, cash, records management, procurement, public grievances, legal matters, RTI, implementation of policies, schemes and budget, and should be proficient in MS Word, PowerPoint and Excel. Eligible applicants should submit their applications in the prescribed format to the Office of the Additional DGFT CLA A Wing, Indraprastha Bhavan, IP Estate, New Delhi 11002, as per the prescribed terms and conditions. Those who had applied for the same post during the previous year were not selected, shortlisted, need not apply again. Further details regarding eligibility, remuneration, duties and application procedures are available on the website, that is at www.dgft.gov.in. Mineral Exploration and Consultancy Limited, a Mini Ratna Central Public Sector Enterprise under the Ministry of Mines, invites online applications for 92 non-executive posts in various disciplines. The vacancies include Accountant, Technician Survey, Technician Sampling, Technician Laboratory, Assistant Materials, Assistant Accounts, Stenographer English, Assistant Hindi, Electrician, Machinist, Technician Drilling, Mechanic, Mechanic-cum-Operator Drilling, Junior Driver, Assistant IT and Assistant HR. Candidates should refer to the detailed advertisement for the prescribed pay scales, education qualifications, experience and age limits. Online registration closes on 11th October 2026. Applications must be submitted online through the career section of the official website, that is at www.mecl.co.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Namaskar, Rozgar Samachar ke aaj ke ank ke saath main hoon Munish Sharma. Aaiye ab jankari lete hain riktiyon se sambandhit. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में इन पदों को भरे जाने की आवश्यकता है. पद हैं कार्यकारी निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक और सहायक प्रबंधक. इच्छुक और योग्य अधिकारी रोजगार समाचार पत्र में ये विज्ञापन विस्तार से देख सकते हैं अथवा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की वेबसाइट से ये जानकारियां हासिल कर सकते हैं. वेबसाइट है www.nfra.gov.in. 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 के रोजगार समाचार पत्रों को आप देख सकते हैं. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में तकनीकी सहायक वर्ग ग के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है. केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या निगम या स्वायत्त संगठनों अथवा लोक क्षेत्र उपक्रमों में काम कर रहे ऐसे व्यक्ति जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं या जिनका वेतन बैंड 15,200 से 20,200 और ग्रेड वेतन 1900 रुपए में मूल काडर या विभाग में 8 वर्ष की नियमित सेवा दे चुके हैं और विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट का ज्ञान वे रखते हैं तथा वांछनीय है क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव. प्रतिनियुक्ति की अवधि रहेगी 3 वर्ष और आयु सीमा 56 वर्ष. अधिक विस्तृत जानकारी के लिए देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की वेबसाइट www.ignfa.gov.in.

0: सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक निदेशक का एक पद भरा जाना है। इस पद से संबंधित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव, आरक्षण, वेतनमान, तैनाती के स्थान और अन्य जानकारियों के लिए देखिए वेबसाइट www.caomod.nic.in। वेबसाइट एक बार फिर सुन लीजिए www.caomod.nic.in। पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड में इन पदों को भरा जाना है। फोरमैन केमिकल, फोरमैन सिविल, कनिष्ठ अधीक्षक मानव संसाधन, फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑपरेटर केमिकल, तकनीशियन इलेक्ट्रिकल, तकनीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन तथा तकनीशियन मैकेनिकल। इन पदों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए BCPL की वेबसाइट यानी ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड की वेबसाइट www.bcplonline.co.in। वेबसाइट फिर से सुन लीजिए www.bcplonline.co.in। विकास अध्ययन केंद्र तिरुवनंतपुरम में सहायक प्रोफेसर के दो पद सामान्य श्रेणी के लिए और एक पद दिव्यांग जन श्रेणी के लिए उपलब्ध है। नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित हैं। ये पद सातवें केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स के शैक्षणिक वेतन स्तर 10 में है। अधिक जानकारी के लिए देखिए विकास अध्ययन केंद्र तिरुवनंतपुरम की वेबसाइट cds.edu/jobs। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
4: Hello Jaya, hello and a very warm welcome to all those tuned into Parikrama on 100.1 FM Gold. I'm Abhishek Mukhopadhyay and with me today is of course my co-host Jaya Bharti. Well, listeners, is widely considered a great influential personality because of how he changed the world through technology. He stood out simply because firstly he was a visionary creator. He just did not make computers, he imagined devices that changed how we live. He helped create the iPhone, iPad and iPod, which completely changed how we listen to music, talk to friends and use the internet. Secondly, he focused on simplicity and beauty. He made sure his products looked sleek and were simple enough for anyone to understand without reading a long manual. And lastly, he was a master storyteller. He did not just explain technical details, he showed people how these new tools could improve their daily lives and inspire them to think different. Yes, he's none other than the American businessman, inventor, and industry visionary who co-founded Apple Inc. and helped transform personal computing and consumer electronics. He's none other than Steve Jobs, and today we observe his death anniversary, and we shall talk about him later in the program. But first of all, we begin with the news headlines at this hour.
3: बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलाओ के साथ

0: वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: Indian Switzerland inked several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure.
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा, ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
1: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑर्डर सीबीआई प्रोब इनटू ईडी एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पंजाब चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस।
0: और मौसम विभाग ने कल तक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी।
1: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Habitat Day and World Teachers Day. Well, to begin our first topic, that is the World Habitat Day, Jaya, let me begin with a simple question. What makes a house a home? Is it four walls and a roof, a comfortable bed, a kitchen where your favorite food is cooked, or perhaps simply the feeling of being safe when you close the door behind you? For many of us, having a safe and decent place to live may seem like an ordinary part of life. But for millions of people around the world, adequate housing is still a dream. And that brings us to something important that we're talking about today, World Habitat Day.

0: वर्ल्ड हैबिटेट डे, विश्व आवास दिवस, हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है और इस साल ये 5 अक्टूबर 2026 को है, यानी आज। ये दिन रुक कर हमें हमारे कस्बों और शहरों के हालात पर सोचने और खुद से एक ज़रूरी सवाल पूछने का है। क्या हम ऐसी जगहें बना रहे हैं जहां हर किसी को सुरक्षित, आरामदायक और सम्मान के साथ रहने का मौका मिले? बहुत से लोगों के लिए चुनौती सिर्फ घर ढूंढना नहीं है, चुनौती एक ऐसा घर ढूंढना है जो रास्ता हो, जो सस्ता हो, सुरक्षित हो, आसानी से पहुंचा जा सके और शहर की जिंदगी से मिलने वाले मौकों से जुड़ा हो।
1: एंड द थीम दिस ईयर फोकसेस ऑन अ सिंपल बट पावरफुल आइडिया, एडिक्वेट हाउसिंग फॉर ऑल, बिकॉज हैविंग अ होम इजंट जस्ट अबाउट ओनिंग अ प्रॉपर्टी, इट इज अबाउट हैविंग अ प्लेस वेयर यू कैन फील सेफ, सिक्योर एंड ह्यूमन। So what exactly do we mean when we talk about adequate housing? It may sound like a complicated term, but the idea is actually very simple. Imagine looking for a home. You would probably want a roof that doesn't leak, access to clean water and electricity, a safe neighborhood, and access to schools, hospitals, transport and jobs. And perhaps most importantly, you would want to know that you can afford to live there without having to sacrifice everything else. That is the heart of the conversation about adequate housing. It isn't necessarily about luxury, it's about dignity.

विश्व आवाज दिवस के मौके पर आइए खुद से एक आसान लेकिन जरूरी सवाल पूछें। किसी जगह को असल में रहने लायक क्या बनाता है? क्या यह सिर्फ एक घर, सड़क, ऊंची इमारत या आधुनिक शहर है, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा कुछ और है? जब हम आवास शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में जंगल, वेटलैंड, समुद्र और पहाड़ों का ख्याल आता है। वे जगहें जहां जानवर और पौधे रहते हैं, लेकिन इंसानों के भी आवास होते हैं। हमारे गांव, कस्बे, शहर और आस पड़ोस, ये सभी आवास ही हैं। आवास का मतलब सिर्फ चार दीवारें और छत नहीं है। इसमें हमारे सांस लेने के लिए हवा, पीने का पानी, फसल उगा

आने वाली मिट्टी, छाया देने वाले पेड़ और हमारे आसपास मौजूद अनगिनत पौधे और जानवर भी शामिल हैं। इसीलिए इंसानी आवास के बारे में होने वाली हर बातचीत में प्रकृति को केंद्र में रखना जरूरी है। हम प्रकृति से अलग नहीं रहते, हम उसी के भीतर रहते हैं।

0: Yes, and today many natural habitats are under increasing pressure. Forests have been cleared, wetlands are disappearing, rivers are becoming polluted, and green spaces are shrinking as cities expand. Climate change is creating additional challenges through rising temperatures, extreme weather, and changing rainfall patterns. When nature loses its habitat, wildlife loses its home. But human beings also lose something important. We lose clean air, clean water, biodiversity, and the natural protection that ecosystems provide against extreme weather. Most importantly, we risk losing our connection with the natural world and forgetting that our own well-being depends on the well-being of nature.
1: और श्रोताओं, अच्छी बात यह है कि प्राकृतिक आवासों को बचाने के लिए हमेशा बड़े या असाधारण कामों की जरूरत नहीं होती। इसकी शुरुआत हमारे अपने घरों के बाहर से ही हो सकती है। हम स्थानीय पेड़ लगा सकते हैं और उनकी रक्षा कर सकते हैं, पानी बचा सकते हैं, कचरा कम कर सकते हैं और गैर जरूरी प्लास्टिक का इस्तेमाल न करके और अपने स्थानीय झीलों, तालाबों और नलियों को कचरे से मुक्त रख सकते हैं। हम ऐसे पौधे उगा सकते हैं जो पक्षियों, तितलियों और परागण में मदद करने वाले अन्य जीवों के लिए फायदेमंद हो और हम अपने आस पड़ोस में मौजूद हरियाली वाली जगहों को भी बचा सकते हैं। जब भी मुमकिन हो हम पैदल चलने, साइकिल चलाने या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम प्रकृति को सिर्फ हमारे काम आने वाले संसाधन के तौर पर नहीं बल्कि अपने समुदाय के एक जीवित हिस्से के तौर पर महत्व देना सीखें। हर इलाके में एक ज़्यादा सेहतमंद और स्वागत करने वाला प्राकृतिक आवास बनने की क्षमता होती है।
0: Yes, and now we move on to our second topic in a Dateline section. Well, October 5th is also celebrated every year as World Teachers Day, a day dedicated to appreciating teachers and recognizing the important role they play in shaping a future. Think about it, before we could write our names, solve equations, or understand the world around us, there was a teacher patiently guiding us. A teacher doesn't just teach from a textbook, they inspire us to ask questions, learn from our mistakes, and believe in ourselves. And as Jaya, the saying goes, a good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning.

श्रोताओं, ये बहुत दिलचस्प है कि भारत में हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, जबकि दुनिया भर में यही दिन ठीक एक महीने बाद मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस हमें याद दिलाता है कि शिक्षक का मतलब सिर्फ अच्छे मार्क्स और परीक्षा पास करना नहीं है, इसका उद्देश्य बेहतर इंसान बनना है और शिक्षक इस सफर का एक अहम हिस्सा होते हैं। इसलिए जो भी शिक्षक ये सुन रहे हैं उन्हें धन्यवाद। आपके धैर्य, आपकी लगन, आपकी दयालुता और हर एक छात्र के भविष्य को संवारने में आपकी मदद के लिए आपका शुक्रिया। शिक्षक भले ही पाठ पढ़ाते हों लेकिन उनका असर जिंदगी भर रहता है। दुनिया भर के सभी बेहतरीन शिक्षकों को विश्व शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है। तो परिक्रमा की शुरुआत करते हैं देहरादून से, जहां

0: रेंजर ग्राउंड में आज से सरस फूड फेस्टिवल 2026 शुरू हो गया है। 7 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों के पारंपरिक स्वाद, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों की झलक देखने को मिल रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपने उत्पादों की बिक्री और उन्हें बड़े बाजार तक पहुंचाने का मंच भी मिल रहा है।
1: देहरादून के रेंजर ग्राउंड में आयोजित सरस फूड फेस्टिवल 11 अक्टूबर तक चलेगा। महोत्सव में 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों पर पारंपरिक खाद्य पदार्थों के साथ हस्तशिल्प, हथकरघा और विभिन्न स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं इसमें हिस्सा ले रही हैं। उत्तराखंड के 117 स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न श्रेणियों में स्टॉल आवंटित किए गए हैं। वहीं देहरादून जिले के 30 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भी अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री कर रही हैं। महोत्सव में खाद्य पदार्थों के साथ लाइव फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं। इससे लोगों को अलग अलग क्षेत्रों के पारंपरिक व्यंजनों को करीब से देखने और उनका स्वाद लेने का अवसर मिल रहा है। सरस फूड फेस्टिवल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराना और उनके उत्पादों की पहचान बढ़ाना है। इसके जरिए महिलाओं के स्वरोजगार को मजबूत करने के साथ उनके उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुँचाने का अवसर दिया जा रहा है। महोत्सव में उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों और स्थानीय उत्पादों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों की खान पान और हस्तशिल्प संस्कृति भी एक ही मंच पर दिखाई दे रही है। फूड स्टॉलों के बीच प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इसमें स्वाद और प्रस्तुतीकरण के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टॉलों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा कृषि, उद्यान, उद्योग, पर्यटन, रेशम और सेवायोजन जैसे विभागों की ओर से लाभार्थियों के साथ विचार विमर्श और गोष्ठियां भी आयोजित की जाएंगी। कुल मिलाकर सरस फूड फेस्टिवल देहरादून में स्वाद और संस्कृति के साथ महिला उद्यमिता और स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने का अवसर लेकर आया है। 7 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में लोग पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने के साथ विभिन्न क्षेत्रों के हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी कर सकेंगे। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से संतोष थपलियाल।
2: With Navratri less than a week away, cultural bazaars across Chennai are bustling with activity as traditional doll artisans showcase their craft for the cherished Bommai Golu festival. We have a report from a correspondent.
3: A festive buzz has swept across Chennai as the city counts down to Navaratri, beginning this Sunday, the 11th of October. Navaratri, meaning 9 nights, celebrates the victory of good over evil through the worship of goddess Durga, Lakshmi and Saraswati. In Tamil Nadu, these 9 days come alive with Bommai Golu, a unique tradition where families arrange clay and wooden figurines on stepped platforms in their homes, turning living rooms into a vibrant storytelling spaces. To sustain this tradition, city markets have transformed into seas of color over the past few days. Artisans and women's self-help groups from towns like Tanjavur, Kadalur and Kanchipuram have arrived with thousands of handcrafted dolls. From exhibition venues like Mother Teresa Magalir Valagam to neighborhood mandabams, families are flocking in to pick their favorites. You can spot everything here, from traditional wooden Marapachi dolls to intricate clay deities to creative contemporary sets. Beyond its cultural charm, Golu provides a crucial economic lifeline. For many potters and artisans, Golu season brings in their main income of the entire year. As homes prepare to set up their stepped displays, Chennai's bustling bazaars prove that age-old heritage and community livelihoods continue to thrive together. This is Srividya Mariappan from Akashwani Chennai for Parikrama.
2: Union MOS for Education and Minister of Development of Northeastern Region, Dr. Shukanta Mojumdar, is on an official visit to Sikkim today.
4: कल शाम रोंगपो टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर पहुंचने पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार को एसडीएम रोंगपो सुजाता सुब्बा और गृह विभाग सिक्किम सरकार के प्रोटोकॉल अधिकारी डीपी सिलाल ने भव्य तरीके से स्वागत किया है। डॉ. मजुमदार ने आज सुबह गैंगटॉक स्थित अपने आधिकारिक आवास पर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग गोले से मुलाकात किया। तामांग ने डॉ. मजुमदार को उनके आधिकारिक कार्यक्रमों और सिक्किम दौरे के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रगति और विकास के लिए निरंतर सहयोग और सार्थक सहयोगिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. मजुमदार आज प्रधानमंत्री के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विकास पहल पीएम डिवाइन के तहत चल रही परियोजनाओं को स्थलों के साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद एनईसी और सिक्किम सरकार द्वारा वित्तीय पोषित अन्य परियोजनाओं को भी दौरा करेंगे। मोइना चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार।

0: चार गैंगटॉक परिक्रमा के लिए।
1: श्रोताओं अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं वहां की हलचल।
2: इंडियन वेस्ट इंडीज हैव बीन फाइन फॉर मेंटेनिंग स्लो ओवर रेट्स ड्यूरिंग द थर्ड एंड फाइनल ओडीआई क्रिकेट ऑफ द सीरीज इन न्यू चंडीगढ़ ऑन सैटरडे। India were fined 20% of the match fee, while West Indies were fined 10% after being found to be 4 and 2 over short of the required over rates. Prakash Bhatt of the Emirates ICC International Panel of Match Referees imposed the sanctions. Both captains pleaded guilty to the offences and accepted the proposed sanctions. And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices rose around 0.6% today, snapping a four-day losing streak. The Sensex gained 473 points to close at 72,382. The Nifty climbed 134 points to settle at 22,556. In the broader market, the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index jumped 0.7% and the small-cap 100 index advanced 0.5%.
1: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
3: द डे ऑफ 5th अक्टूबर इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर बाजी राउत। ही वाज मियरली अ 12 ईयर ओल्ड बॉय व्हेन ही फियरलेसली स्टूड इन फ्रंट ऑफ अ बंच ऑफ ब्रिटिश सिपॉयज डिनाइंग देम सर्विस।

काफी पसंदीदा होता है। और वर्मा जी के उपन्यास पर बनी फिल्मों के गीत भी आज अमर हैं। आइए सुनते हैं साल 1964 की फिल्म चित्रलेखा से ये गीत।

और अब चलिए रुक करते हैं साल 1975 में आए उनके दूसरे मशहूर उपन्यास पर आधारित फिल्म आखिरी दांव की तरफ, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।

0: Yes, and Ramnath Goenka passed away on this day in 1991. He was an Indian newspaper publisher. He bought the majority stake of the Indian Express in 1930s. He created the Indian Express Group with various English and regional language publications. In 2000, India Today magazine named him amongst the list of 100 people who shaped India. The Ramnath Goenka Excellence in Journalism Awards, named after Ramnath Goenka, are one of the awards in India in the field of journalism.
1: आज ध्रुपद सम्राट के नाम से विख्यात महान शास्त्रीय गायक पंडित राम चतुर मल्लिक की जयंती है। 5 अक्टूबर 1902 को बिहार के दरभंगा में संगीतकारों के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे पंडित जी दरभंगा घराने के शीर्ष स्तंभ थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। आकाशवाणी के इतिहास में उन्हें टॉप ग्रेड आर्टिस्ट का दर्जा दिया गया था। पंडित जी की ध्रुपद गायकी बनारस से लेकर जर्मनी तक सराही गई। उनकी पावन स्मृति पर उन्हें नमन करते हुए सुनते हैं आकाशवाणी के पुराने अभिलेखागार से उनके द्वारा गाई गई एक बेहद दुर्लभ और मधुर शास्त्रीय प्रस्तुति।

आज प्रख्यात तिलस्मी और जासूसी उपन्यासकार दुर्गा प्रसाद खत्री की पुण्यतिथि है, जिनका निधन 5 अक्टूबर 1974 को हुआ था। महान लेखक देवकी नंदन खत्री जी के पुत्र दुर्गा प्रसाद जी ने न केवल अपने पिता की चंद्रकांता जैसी तिलस्मी शैली को आगे बढ़ाया, बल्कि लाल पंजा और रक्तामंडल जैसे देशभक्ति से ओतप्रोत जासूसी उपन्यास भी लिखे। खत्री जी की इसी रहस्यमयी और थ्रिलर विधा को सलाम करते हुए आइए सुनते हैं हिंदी सिनेमा के उनके इतिहास की एक ऐसी कल्ट

श्रोताओं, और अब समय हो चला है आपसे यहीं विदा लेने का, तो परिक्रमा के इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। अनुमति दीजिए जया भारती और हमारे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। नमस्कार।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார். भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं।
2: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
3: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
2: And Department of Science and Technology, our DST.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के लिए राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले वर्ष अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया था।
4: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पामला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। नई दिल्ली में आज म्यूनिक सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया कैम्प के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके ये बदलाव किसने किए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्कूलों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति के मसौदे पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सरकार देश के शिक्षा तंत्र में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को एक अहम हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार के नाम को स्वीकृति दी। मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप में भी कल तक बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 00037. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது விஸ்லேஷன் டெல்லி அஞ்சல்.
1: ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் சேவா பிரபாக் கி பிரஸ்துதி விஸ்லேஷன்.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। श्रोताओं, आज कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, लेकिन जब किसी काम में बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों का विश्लेषण करना हो, मौसम का पूर्वानुमान लगाना हो, बाढ़ का अनुमान लगाना हो, नई दवाओं की खोज में सहायता लेनी हो या अंतरिक्ष से जुड़े जटिल सवालों पर जवाब तलाश करना हो, तब सामान्य कंप्यूटरों से कहीं अधिक तेज कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत होती है। ऐसे कामों के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर बहुत तेज गति से बड़ी संख्या में गणनाएं कर सकते हैं और एक साथ कई काम कर सकते हैं। भारत ने भी सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अपनी क्षमता लगातार बढ़ाई है। देश की यह यात्रा 1990 के दशक की शुरुआत में परम 8000 से शुरू हुई और वर्ष 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM की शुरुआत के साथ एक बड़े राष्ट्रीय अभियान में बदल गई। सितंबर 2026 तक भारत में 40 सुपर कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 68 पेटाफ्लॉप्स है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, भारत ने इस क्षेत्र में अब तक क्या प्रगति की है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का उद्देश्य क्या है और इनका इस्तेमाल आम लोगों के जीवन से जुड़े किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है और भारत में इसकी जरूरत क्यों पड़ी।
3: श्रोताओं, सामान्य कंप्यूटर की तुलना में सुपर कंप्यूटर अत्यधिक तेज गति से बड़ी संख्या में गणनाएं कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेसर और सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम एक साथ काम करते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई बड़ा काम एक व्यक्ति करने के बजाय कई लोग मिलकर एक साथ करें तो वो काम जल्दी पूरा होगा। इसी तरह सुपर कंप्यूटर भी एक ही समय में कई गणनाएं करते हैं। सुपर कंप्यूटर की क्षमता को फ्लॉप्स यानी FLOPS में मापा जाता है। ये बताता है कि कंप्यूटर एक सेकंड में कितनी गणनाएं कर सकता है। एक टेराफ्लॉप्स का मतलब है एक सेकंड में लगभग 1 ट्रिलियन गणनाएं, जबकि एक पेटाफ्लॉप्स का मतलब है एक सेकंड में लगभग 1 क्वाड्रिलियन गणनाएं। श्रोताओं, सुपर कंप्यूटर केवल वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। इनका इस्तेमाल ऐसे कई कार्यों में किया जा रहा है जिनका सीधा संबंध आम लोगों के जीवन से है। मौसम के पूर्वानुमान में सुपर कंप्यूटर बड़ी मात्रा में मौसम से जुड़े आंकड़ों का तेजी से विश्लेषण करते हैं। इससे भारी बारिश, तूफान और दूसरी मौसमी परिस्थितियों का पहले से अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। इसी तरह बाढ़ की चेतावनी में भी सुपर कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नदी में पानी का स्तर, बारिश और दूसरे आंकड़ों का विश्लेषण करके संभावित बाढ़ का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय रहते सावधान करने और बचाव की तैयारी करने में सहायता मिलती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुपर कंप्यूटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी संख्या में दवाओं और रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करके नई दवाओं की खोज और परीक्षण की प्रक्रिया को तेज करने में सहायता मिलती है। कृषि में फसल की पैदावार का अनुमान लगाने और मौसम का फसलों पर होने वाले प्रभावों को समझने में भी उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग उपयोगी है।
2: श्रोताओं, भारत में डिजिटल गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। देश में बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा तैयार हो रहा है। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM शुरू किया। इस मिशन को लगभग 4,500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY इस मिशन को संयुक्त रूप से संचालित करते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC पुणे और भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का उद्देश्य देश में सुपर कंप्यूटिंग की क्षमता बढ़ाना और क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।

0: देश में बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा तैयार हो रहा है। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM शुरू किया। इस मिशन को लगभग 4,500 करोड़ रुपए के पर व्यय के साथ शुरू किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY इस मिशन को संयुक्त रूप से संचालित करते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC पुणे और भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का उद्देश्य देश में सुपर कंप्यूटिंग की क्षमता बढ़ाना और इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी विकास और देश की सामाजिक आवश्यकताओं से जुड़े कामों में सुपर कंप्यूटिंग के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्रोताओं, इस मिशन के अंतर्गत केवल सुपर कंप्यूटर लगाने पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारत में सुपर कंप्यूटर के लिए जरूरी सर्वर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और कूलिंग जैसी तकनीक भी विकसित की जा रही है। श्रोताओं, इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज भारत अपने सुपर कंप्यूटिंग परितंत्र को और मजबूत कर रहा है। अब सवाल ये है कि सितंबर 2026 तक भारत ने इस क्षेत्र में कितनी प्रगति की है और इन सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल किन महत्वपूर्ण कामों में किया जा रहा है, आइए अब जानते हैं।
1: श्रोताओं, सितंबर 2026 तक भारत ने 68 पेटाफ्लॉप्स की संयुक्त क्षमता वाले 40 सुपर कंप्यूटर लगाए हैं। इनमें 13 हाई एंड सुपर कंप्यूटर ऐसे हैं जिनकी क्षमता 1 पेटाफ्लॉप से अधिक है। इसके अलावा 12 सिस्टम ऐसे हैं जिनकी क्षमता 500 टेराफ्लॉप्स से 1 पेटाफ्लॉप्स के बीच है। अन्य 15 सिस्टम की क्षमता 500 टेराफ्लॉप्स से कम है। इन सुपर कंप्यूटरों को देश के अलग अलग शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में लगाया गया है। श्रोताओं, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की एक बड़ी उपलब्धि ये है कि भारत ने सुपर कंप्यूटर से जुड़े कई महत्वपूर्ण उपकरण और तकनीक देश में ही विकसित की हैं। इसी दिशा में रुद्र सर्वर श्रृंखला विकसित की गई है। रुद्र सर्वर सुपर कंप्यूटर को जरूरी कंप्यूटिंग शक्ति उपलब्ध कराते हैं। इन्हें CDAC ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। इन्हें स्वदेशी रुद्र सर्वरों और स्वदेशी सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से परम रुद्र सुपर कंप्यूटर तैयार किए गए हैं। सितंबर 2026 तक परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों में 6,000 रुद्र सर्वर लगाए जा चुके थे, जबकि 1,500 अन्य सर्वर निर्माण के अधीन थे। भारत ने सुपर कंप्यूटरों के लिए हाई स्पीड इंटरकनेक्ट नेटवर्क भी विकसित किया है। इसका काम अलग अलग कंप्यूटिंग सिस्टम के बीच तेजी से डेटा का आदान प्रदान करना है। इसके अलावा स्वदेशी कूलिंग तकनीक भी विकसित की गई है। सुपर कंप्यूटर बहुत अधिक गर्मी पैदा करते हैं, इसलिए उन्हें ठंडा रखने के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत होती है। श्रोताओं, अब बात करते हैं कि इन सुपर कंप्यूटरों का फायदा देश और आम लोगों को कैसे मिल रहा है। स्वास्थ्य और दवा की खोज के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर बड़ी संख्या में दवाओं और अणुओं का अध्ययन करने में मदद करते हैं। इससे वैज्ञानिक को नई दवाओं की खोज और संभावित दवाओं के परीक्षण में तेजी लाने में मदद मिलती है। COVID-19 के दौरान भी ऐसी कंप्यूटिंग क्षमता का इस्तेमाल मौजूदा दवाओं की जांच और उनके संभावित प्रभावों को समझने के लिए किया गया। मौसम और पर्यावरण के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर मौसम और वायु प्रदूषण से जुड़े बड़े आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए भी सुपर कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। जंगल की आग के फैलाव का अनुमान लगाने में भी सुपर कंप्यूटर मदद कर रहे हैं। इसके अलावा तेल और गैस की खोज, अंतरिक्ष अनुसंधान, खगोल विज्ञान, परमाणु विज्ञान, सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रोताओं, सुपर कंप्यूटिंग के साथ साथ प्रशिक्षित लोगों की जरूरत भी होती है। इसी वजह से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 400 से अधिक संस्थानों में 16,000 से अधिक शोधकर्ताओं को मिशन के बुनियादी ढांचे से मदद मिली है। इनमें 2,900 से अधिक PhD छात्र भी शामिल हैं। सितंबर 2026 तक इन प्रणालियों पर 1,50,00,000 से अधिक कंप्यूट जॉब यानी जटिल कंप्यूटर कार्य किए जा चुके हैं और 1,990 से अधिक शोध प्रकाशनों में इनका योगदान रहा है। श्रोताओं, देश में सुपर कंप्यूटिंग के इस्तेमाल को और बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं, हैकथॉन और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क यानी NKN भी इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये देश के अलग अलग शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को एक तेज नेटवर्क से जोड़ता है। इससे शोधकर्ताओं को

0: कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंचने और दूसरे संस्थानों के साथ मिलकर काम करने में मदद मिलती है।
1: श्रोताओं, भारत की सुपर कंप्यूटिंग यात्रा परम 8000 से शुरू होकर आज एक बड़े राष्ट्रीय परितंत्र तक पहुंच चुकी है। भारत को सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और देश की वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षमता को मजबूत करना है। सुपर कंप्यूटिंग का महत्व केवल बड़ी और तेज मशीनों तक सीमित नहीं है, इसका असली उद्देश्य विज्ञान और तकनीक की मदद से देश की वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता करना है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक हरमनप्रीत सिंह। नमस्कार।
2: और आइए अब सुनते हैं समाचार। इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। नवदेहल्यां भारत स्विट्जरलैंड शिखर वार्ता सम्पन्ना। व्यापार सम्बन्धान् संप्रवर्धयितुं वैश्विकीं संभरण श्रृंखलां दृढ़यितुं च उभौ देशौ प्रतिबद्धौ इति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। भारत यूरोपीय संघ व्यापार संधिः भारतस्य उत्कृष्ट वार्ता कौशलस्य परिचायिका इति वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन। पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालयस्य भ्रष्टाचार प्रकरणे उच्च न्यायालयस्य कठोरः समादेशः। प्रवर्तन निदेशालयस्य अभियोगान् आधृत्य सीबीआई अन्वेषणस्य अपि समादेशः। अपि च कर्नाटक केरल तमिलनाडु प्रभृति दक्षिण प्रदेशेषु श्वः पर्यन्तम् अतिवृष्टिः सम्भाव्यते इति ऋतु विज्ञान विभागः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। सैन्य प्रशिक्षणे रक्षा उद्योगेषु च मैत्री सम्बन्धान् दृढयितुम् अद्य भारतेन स्विट्जरलैंड देशेन सह नवदेहल्यां अभूतपूर्वः विचार विनिमयः समाचरितः। विदेश मंत्रालयस्य सचिवेन सीबी जॉर्ज इत्यनेन सहर्षं विज्ञापितं यत् स्विस संस्थाः मेक इन इंडिया इति राष्ट्रिय संकल्पस्य छायायाम् आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादने सहभागित्वं विधातुम् अर्हन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भावपूर्ण आमन्त्रणेन भारतधरां सम्प्राप्तः स्विस राष्ट्रपतिः गाई पार्मेलीन अद्य मन्त्रिमण्डलस्तरीय वार्तासु सहभागी भूत्वा पञ्च महत्वपूर्णानि सहमतिपत्राणि हस्ताक्षरितवान्। असौ टीईपीए व्यापारसन्धेः प्रथमवार्षिकोत्सववेलायां समृद्धिशिखरसम्मेलने अपि राष्ट्रस्य प्रतिनिधित्वं विधास्यति। एतदतिरिच्य 27-उत्तर-2000 जून मासे जेनेवा नगरे समायोज्यमाने एआई शिखर सम्मेलने उभावपि देशौ मानव कल्याणाय दृढ़ संकल्पबद्धौ वर्तेते। भारतस्य राजकीय यात्रायाम् आगतेन स्विस संघस्य राष्ट्रपतिना गाई पार्मेलीन इत्यनेन सह केन्द्रीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः अद्य नवदेहल्यां औपचारिक सम्मेलनम् अकरोत्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटले स्वीय हृदयोद्गारं प्रकाशयन् विदेश मंत्रिणा भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ संधि संजात प्रतिश्रुतिम् अवसृत्य द्विपक्षीय सहयोग विस्तारणाय राष्ट्रपतेः पार्मेलीन इत्यस्य सहृदयता भूरिशः अभिनन्दिता। एतदतिरिच्य असौ सविश्वासं प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह राष्ट्रपतेः आसन्नः विचारविनिमयः उभयोः देशयोः बहुविधसम्बन्धं जगति सुदूरं प्रसारयिष्यति। नवदेहल्यां म्यूनिक नेतृसम्मेलने केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् अवोचत् यत् भारत अमेरिका देशयोः मध्ये व्यापार सन्धेः सम्भाषण प्रक्रिया अधुनापि प्रवर्तते, पूर्णतां च नाधिगता।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है. हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं. 2331-4444, 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: जी नमस्कार, धन्यवाद.
1: और अब हेडलाइंस के साथ है निशित कुमार.
0: The benchmark domestic indices rise, Sensex adds over 450 points, Nifty settles above 22,550. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure, and Asian stock markets end in positive territory.
1: प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक तेजी में रहे. सेंसेक्स में आई 450 अंकों से अधिक की बढ़त. निफ्टी 22,500 के स्तर को पार कर गया. भारत और स्विट्जरलैंड ने यातायात तकनीक, मोबिलिटी प्रणाली और मूलभूत ढांचे में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर किए हस्ताक्षर. और एशियाई शेयर बाजार बढ़त के साथ हुए बंद.

0: any financial decision.
1: और अब रुक करते हैं शेयर बाजार का. चार दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज लगभग 0.6% की बढ़त पर बंद हुए. सेंसेक्स 473 अंकों की तेजी दर्ज करता हुआ 72,282 पर बंद हुआ. निफ्टी 134 अंक बढ़कर 22,556 पर दर्ज हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.7% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक 0.5% की तेजी पर बंद हुए.
0: The benchmark domestic equity indices rose around 0.6% today, snapping a four-day losing streak. The Sensex gained 473 points to close at 72,382. The Nifty climbed 134 points to settle at 22,556. In the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index jumped 0.7% and the small-cap 100 index advanced 0.5%.
1: और सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 20 के शेयर आज बढ़त में रहे. सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयरों में ITC 4.5%, Eternal 2.5% और भारतीय एयरटेल 2.4% के उछाल में रहे. वहीं सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो HCL Tech 3.7%, HDFC बैंक 2% और सन फार्मा और इंफोसिस प्रत्येक 1.5% की गिरावट में रहे.
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 24 out of 28 sectors edged upwards. Among the top gainers, telecommunication jumped 2.1%, mid-small private bank rose 1.7% and FMCG added 1.5%. In contrast, hospitals shed 2.3%, healthcare fell 1.1% and insurance dropped 0.3%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,448 companies declined, 2,052 advanced and 260 remained unchanged.
1: और रुपए पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले मामूली मजबूती के साथ 96.30 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. इस बीच हमारे साथ हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उन्हें शामिल कर लेते हैं. जितेंद्र है जयपुर से, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए.
2: हाँ हाँ सर, आपका भी मैडम धन्यवाद. सर मेरा दो प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, मैं नाम तो नहीं लूंगा नियम के मुताबिक. एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसका र्यूमर कुछ दिन पहले आया था तो उसके काफी प्राइस डाउन हुए, अभी 700 पे चल रहा है. तो मैं उसमें पिछले 2-3 महीने से बाइंग कर रहा हूँ, तो क्या स्ट्रेटेजी सही है पहला. और दूसरा, जो रजिस्ट्रार कंपनी होती है आईपीओ का जब आता है रजिस्ट्रार कंपनी, तो भी बहुत पुराना रजिस्ट्रार कंपनी है, उसका आईपीओ आया था तो उसमें मैंने लिया था, तो 150-200% प्रॉफिट पे है, तो उसको क्या होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, क्योंकि वो रजिस्ट्रार कंपनी है तो चलेगा ही चलेगा कंपनी जैसे.
3: जितेंद्र जी, आपने शुरू में कहा कार्यक्रम के नियम के मुताबिक हम कंपनी का नाम नहीं ले सकते हैं और आपने दो खास कंपनी के शेयर के बारे में पूछा है, तो हम क्षमा चाहेंगे, हम उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते.
1: और आपकी एक छोटी सी टिप्पणी, आज जो हमने बढ़त देखी है बाजार में चार दिनों के बाद, इसको आप कैसे लेते हैं? अगर थर्सडे को भी हम देखें तो एंड में 700 पॉइंट्स की रिकवरी हुई थी, सो क्या कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट लौट रहा है?
3: देखिए, दो वजह है. एक तरफ आप देखिए कि सऊदी अरब ने जो है वो तेल के दाम घटा दिए, तो वो एक अच्छी बात रही. लेकिन दोपहर होते होते एक खबर आई कि वहाँ पे पाइपलाइन बंद कर दिया गया क्योंकि उस पर हमला हुआ है, तो एक मिश्रित था. तो अगर वो खबर नहीं आती तो शायद आज शेयर बाज़ार और ऊपर जाता. तो एक तो आप कह सकती हैं कि इसका एक सकारात्मक रुख हमने देखा है. दूसरी तरफ क्या है कि बाज़ार बहुत नीचे आ चुका है और अब एक खरीदारी का, जिसे कहते हैं कि एक माहौल बन सकता है, क्योंकि अब निचले स्तर पर आपको बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो बहुत ऊंची कीमत पर थे, उनके भाव बढ़े हैं, तो उसका असर जो है आप देख रहे हैं कि आज बाजार में जो हमने सकारात्मक रुख देखा. और आपने बीते सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन देखे, उस दिन भी तेजी आई. और एक और जो हमने अच्छी चीज़ देखी है कि जो हमारे विदेशी निवेशक जो थे, जो अभी लगातार पैसा निकाल रहे हैं, बीते कुछ दिनों से उन्होंने नेट बाइंग करी है. तो ये ऐसे कारण है जिसका असर हमने देखा है. मूल रूप से आप कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो हैं वो हमारे अनुकूल हैं, और आप केवल भारतीय बाजार की बात नहीं करें, एशिया के तमाम शेयर बाजारों की बात करें, क्योंकि दक्षिण कोरिया आज बंद था उनका बाजार, बाकी जितने भी बात करें, चाहे चीन की बात करें, हांगकांग की बात करें, सिंगापुर की बात करें, वहाँ परिस्थिति सकारात्मक रही. तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ जब सकारात्मक

0: Economic Trade and Economic Partnership Agreement with the European Free Trade Association EFTA countries last October. Mr. Modi noted that the agreement was India's first free trade agreement with a European economic bloc. He described it as an ambitious framework for investment, innovation, employment and shared prosperity. The Prime Minister highlighted that under the agreement, India aims to attract $100 billion in investment and create 10 lakh direct jobs over the next 15 years. Prime Minister Modi said that India and Switzerland have taken several important decisions to enhance market access for Indian exports in Switzerland.
1: हमने भारत के एक्सपोर्ट्स का स्विट्जरलैंड में मार्केट एक्सेस बढ़ाने और दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे भारत के एग्रीकल्चर, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स की स्विट्जरलैंड में निर्यात बढ़ेगी और साथ साथ भारत के बायोटेक, लाइफ साइंसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम नए स्विस इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेंगे।
0: Shishir ji, we already saw the India-EU FTA being signed, which was obviously, you know, termed as the mother of all agreements, trade agreements. Now this agreement with EFTA countries, four countries, if I am given to understand, Liechtenstein, Iceland, Switzerland and Norway, these are the four countries. Now these are the four, a bloc within the EU, if I may say. So how do you see this? And of course, you know, today, the agreements which are signed between India and Switzerland, it adds to that. So how do you see this going?
2: इससे पहले कि हम आपकी प्रतिक्रिया लें, गुरुग्राम से हमारे श्रोता उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं. उमेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछे.
3: नमस्कार मार्केट मंत्रा जी, मेरा सवाल ये है कि अगर आज की रेट में एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो तो क्या लार्ज कैप्स सही रहेंगे या गोल्ड का इन्वेस्टमेंट सही रहेगा? और अगर आप एक प्रतिक्रिया और दे पाए कि मान लीजिए कोई 20% ऑल्दो मतलब 20% पेमेंट देके किसी अच्छे बिल्डर में एक बढ़िया फ्लैट बुक कर लिया जाए, ऑल्दो वो लिक्विड और अनलिक्विड वाली चीज जरूर है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रतिक्रिया देना चाहें.
4: देखिए, जो आपने पहला प्रश्न पूछा कि शेयर और सोना, देखिए मेरे हिसाब से आप दोनों में आप कर सकते हैं. उम्र के हिसाब से अगर आपकी उम्र अगर 50 वर्ष से कम उम्र की है तो आप शेयर में उसका पोर्शन ज़्यादा रखिए. अगर आप 60% रख सकते हैं, 40% आप सोने में रख सकते हैं. और अगर आपकी उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा की है तो आप थोड़ा सा उसको पलटिए. और उसके अलावा ये भी है कि उसका एक हिस्सा आप ऐसे जगह पे लगाएं जो आपके लिए सुरक्षित जो है वो निवेश बन सके, जिसे हम डाकघर की बचत योजनाएं कहते हैं या बैंक के फिक्स डिपॉजिट है, वो आपके लिए बेहतर होगा. दूसरा जो आपका प्रश्न है कि क्या हम 20% दे करके एक फ्लैट बुक कर लें, देखिए निश्चित तौर पर घर में निवेश करना, चाहे वो आप उसको इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं या निवेश करने के लिए ले रहे हैं, एक अच्छा जरूर निवेश होता है. लेकिन ध्यान रहे कि आप जिस भी बिल्डर को चुनें वो एक विश्वसनीय बिल्डर हो, जिसकी डिलीवरी का रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसने काम अच्छा किया हो. क्योंकि दिक्कत क्या होती कि कई बार आप पैसा लगा देते हैं और उसमें अगर जितनी भी देरी होती है तो आपका पैसा एक तरीके से फंस जाता है. तो अगर आप डिलीवरी वाले सिस्टम पे देखें कि यदि वो बेहतर हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा. मेरे ख्याल से आप ये भी कर सकते हैं कि 100 को आप 3 हिस्सों में बांट दीजिए. एक, जैसा मैंने कहा, आपकी उम्र के हिसाब से शेयर और सोना. दूसरा विकल्प है शेयर, सोना और डाकघर की बचत योजनाएं. और आप पूरा का पूरा पैसा अगर रियल एस्टेट में ही लगाना चाहते हैं तो आप बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें
0: और बिल्डर रेरा अप्रूव भी हो.
4: बिल्कुल बिल्कुल
2: बिल्कुल.
0: नेक्स्ट कॉलर इज मोहक फ्रॉम फरीदाबाद. मोहक, वेलकम.
5: हेलो सर, गुड इवनिंग. माय क्वेश्चन इज कंसीडरिंग द वोलेटाइल माइक्रो इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड, इज इट बेटर टू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक बॉन्ड्स एज कंपेयर्ड टू इक्विटी मार्केट्स?
4: Yeah, that's a good option, but I would say that it also, because I mean the prices at which the most of the value stocks are available, they are at a very lucrative, and you can get an opportunity to enter into those stock. So you can have some kind of hedging through the bond. I mean, bond is, use the bond as a hedging. So suppose that you have say 100 rupees, and if your age is say less than 40 years, then you can go for 60-40, 60 in the equity and the 40 in the bond. But if you are exceeding 50, then I would say that put 60 rupees in the, or 70 rupees in the bond, and then put remaining 30 rupees in the equity. Because

0: there you will have less time as compared to when you are less than 40 years. So this kind of equation you can say, and at any given point of time, if the value stock is available at a very low price, it is good to enter. You may have some kind of volatility, but if you are giving some time to the stock market, to your capital, then there is a good possibility of getting good return, because stock market is not just about investing money, it is also about investing patience.
1: And briefly, bond market mein risk कम है,
0: बहुत कम होता है. वहाँ पर आपको मूल और ब्याज की एक गारंटी जो है सरकार की, अगर आप सरकारी प्रतिभूति में लगा रहे हैं तो आपको वहाँ मिलता है. अगर कंपनियों के बॉन्ड में आप लगा रहे हैं तो थोड़ा जोखिम होता है, अगर कंपनी डूब गई तो क्या होगा. लेकिन उस सूरत में भी जो कर्ज देने वाले होते हैं उनका पहला हक बनता है, जबकि शेयर में जो पैसा लगाते हैं उनका आखिरी में हक बनता है. तो वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प है.
1: अब हमारे अगले कॉलर हैं नई दिल्ली से अमित झा. अमित जी आपका स्वागत है, सवाल पूछें.
2: नमस्कार सर जी को.
1: जी नमस्कार.
2: जी ना सर, नमस्कार सर.
0: नमस्कार
2: सर, आपसे प्रश्न ये है कि अभी जो इस हफ्ते से Q2 के कंपनी का नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है सर, तो इसी हफ्ते दिग्गज आईटी कंपनी के भी रिजल्ट आने हैं सर, तो आईटी कंपनी का कैसा मतलब प्रदर्शन रह सकता है. और दूसरी चीज सर कि ऑटो और मेटल अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए आज की रैली में देखा जाए तो, और ऑटो सेल्स के पिछले दिनों आंकड़े जो आए थे सर वो खासा उतना तो वो निराशाजनक थे नहीं, लेकिन उसके बावजूद ऑटो सेक्टर की कंपनियां बहुत बुरी तरह से पीड़ित थी सर. धन्यवाद सर.
0: देखिए मेटल मेरे हिसाब से समय एक बहुत ही बेहतर विकल्प है, और मेटल कंपनियों के शेयरों में अगर मैं आज की बात करूं तो दो तीन कंपनियों के जो पहली तिमाही के नतीजे रहे हैं, वित्तीय नतीजों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कामकाज की बात कर रहा हूं, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो उसमें उम्मीद एक ज़्यादा है. ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए मुझे लगता है कि निवेशक त्योहारी मांग का इंतज़ार कर रहे हैं. अगर देखिए अब अगले हमने 10 दिनों के बाद जो है हमारा नवरात्रि शुरू हो रहा है, उस

0: सेक्टर का योगदान था वहाँ पे। अगर आप आईटी सेक्टर की बात करेंगे तो आईटी सेक्टर में नुकसान ही हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से जो तिमाही नतीजे आएंगे जो 10 और 11 से शुरू होने चाहिए, अमूमन 10 और 11 तारीख को पहली बड़ी कंपनी के नतीजे आते हैं, वो नतीजे थोड़े से अच्छे रह सकते हैं, उम्मीद ये की जा रही है। क्योंकि बीच में जब AI कंपनीज ने कहा कि हमें ज़रूरत तो पड़ेगी ही, ये जो कन्वेंशनल कंपनीज हैं जिनके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा AI कंपनीज ने भी कहा कि हमें अपनी गति को जो है वो धीमी करने की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि ऑटो और IT दोनों में एक अगर 3 से 5 साल का टाइम होराइजन लेकर के चलें तो एक बेहतर विकल्प है। लेकिन इनमें जो मेरे लिए जो पहला पसंद आएगा वो मेटल सेक्टर होगा।
1: लेते हैं अगली खबर। भारत के इस वर्ष दिसंबर तक कम से कम 3 और देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते संपन्न करने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि कनाडा और रूस सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौतों पर बातचीत चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
2: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement. The agreement's negotiations are still ongoing, although we'd like to believe that both the sides have reached a plateau beyond which giving or taking might be very, very difficult. But maybe if there are rooms to operate from, both sides would do it.
1: So, ब्रीफली आप जैसा भी पूछ रहे थे मेरे को एंकर, उसी से जुड़ी ये स्टोरी है जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हैं और जैसा इन्होंने कहा कि इंडिया EU डील एक परफेक्ट एग्जांपल है परफेक्ट डील की। आपको लगता है कि जो इसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात हो रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है?
0: दो पहलू हैं, एक हमारा जब हम मुक्त व्यापार समझौता करते हैं और एक हमारा निवेश संवर्धन समझौता करते हैं। ये जो आज वित्त मंत्री निर्मला जी ने जो बात कही है वो निवेश संवर्धन के ऊपर बातचीत की है और देखिए उसमें जो हमारा पुराना जो बना हुआ था उसमें काफ़ी बदलाव किया जा रहा है और कोशिश ये है कि उसमें विवाद कम से कम हो ताकि निवेशकों को एक एक सुरक्षित और एक निश्चित करने वाला माहौल मिले।
3: राइट, एंड द नेक्स्ट कॉलर इज रत्नाकर फ्रॉम मुंबई। रत्नाकर जी,
4: हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि जब भी शेयर मार्केट में हम हमारे स्क्रिप्ट खेल करते हैं तभी जो कुछ उसमें अमाउंट आती है उसमें से इनकम टैक्स जो आता है वो कट होता है क्या? कितना इसके ऊपर टैक्स कट होता है क्या? और वो है, और आने वाले समय में ऑयल के शेयर कैसे रहेंगे?
0: रत्नाकर जी, अगर आपने बेचा है कोई भी शेयर और अगर आपको मुनाफा हुआ है तो आपके AIS में वो दिखेगा, फिर आपको जब आप उस पर कैपिटल गेन जो है वो अलग से पे करेंगे। आपके पास जो बिक्री के बाद पैसा आता है आपके खाते में उसमें STT जरूर कटा हुआ होता है, STT सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जो है, बाकी कैपिटल गेन आपको अलग से उसका भुगतान करना पड़ता है। दूसरा आपने प्रश्न पूछा कि तेल कंपनियों के शेयरों की क्या स्थिति होगी। देखिए, जो भी तेल उत्पादन करने वाली कंपनियाँ हैं उनके शेयरों में आप थोड़ी तेजी देखेंगे जब कभी भी कच्चा तेल ऊपर जाएगा, और अभी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो $100 प्रति बैरल के ऊपर भाव जो है वो बने हुए हैं, लेकिन जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके लिए शायद अच्छी खबर नहीं रहेगी।
1: जैसा हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI की नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है, कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर पर हैं और खाद्य मुद्रास्फीति पर चिंता बनी हुई है। समिति 3 दिवसीय बैठक के अंत में निर्णय की घोषणा से पहले मुद्रास्फीति के आउटलुक और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। रेपो दर में आखिरी बढ़ोतरी फरवरी 2023 में हुई थी जब RBI ने दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। इसके बाद 2023-24 के दौरान दर में कोई बदलाव नहीं किया गया और 2025 में दर में कटौती का चक्र शुरू हुआ। वर्तमान में नीतिगत रेपो दर 5.25% है। जैसा कि आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आशा है कि कल कटौती बढ़त होगी 25 आधार अंक।
0: जी, ये इसलिए भी है क्योंकि महंगाई दर में बढ़ने का सिलसिला सिलसिला बना हुआ है तो शायद हमें उसका असर नीति

0: प्रतिशत ब्याज दर पे देखने को मिलेगा
1: जी. And how much does the the Fed kind of sets the template for that?
0: See, Federal Reserve is always a template for many of the developing economies and also the emerging markets. So when the Federal Reserve is increasing the rate, that is giving a signal that the global inflation is also on the rise. Right. So that could be one of the reason why RBI is also talking about that.
2: Right. अब चलते हैं एशियाई बाजारों की ओर. एशियाई बाजारों पर नज़र डालें तो वहाँ पर आज बढ़त का रुख था. ताइवान का ताइएक्स 2.5% उछल गया. जापान के निकेई 225 सूचकांक में 2.4%. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.5% और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.3% की वृद्धि हुई. इस बीच चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार आज बंद थे. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो जर्मनी का डैक्स 0.1% के नुकसान पर था. हालांकि दिन के कारोबार में लंदन का फुटसी 100 0.3% की तेजी पर था.
1: एंड मीनवाइल वी आर जॉइंड इन बाय योर कॉलर फ्रॉम असम, शुक्रत लिंबो, वेलकम
3: सर. गुड इवनिंग सर.
2: जी जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए.
3: सर मेरा प्रश्न ये है कि सर एनपीएस में जो सरकार द्वारा कोई भी स्कीम में एनपीएस में लगाया हुआ है सर, तो वो सरकार द्वारा लगाया हुआ है तो हम उसको स्कीम चेंज करने से हमें फायदा है या उसी सरकार द्वारा लगाया हुआ स्कीम में रहने से फायदा है, मेरा प्रश्न यही है.
0: नहीं बिल्कुल, आप साल में एक बार बदल सकते हैं और आप तय कर लीजिए कि आपको ज्यादा सुरक्षित माध्यम अपनाने हैं या फिर आप शेयर में पैसा रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है.
2: और एक इम्पॉर्टेंट खबर, नई परचेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर प्रणाली इस महीने की 15 तारीख से लागू हो जाएगी. नए ढांचे के अंतर्गत 2000 रुपए तक के यूपीआई लेन देन पर एमडीआर शून्य होगा. छोटे व्यापारी इस चिंतन में होंगे कि क्या उन्हें अपने मौजूदा क्यूआर कोड को अपग्रेड करने या बदलने की जरूरत है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के अनुसार ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है. मौजूदा क्यूआर ढांचा सामान्य रूप से कार्य करता रहेगा. व्यापारियों को अपने वर्तमान भौतिक QR स्टैंड या साउंड बॉक्स को बदलने, फिर से पंजीकृत करने या संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है. बिना किसी रुकावट के दुकानों पर वर्तमान में प्रदर्शित सभी UPI QR कोड पेमेंट को प्रोसेस करते रहेंगे. NPCI ने स्पष्टीकरण दिया है कि व्यापारी पहले की तरह ही अपनी मौजूदा व्यवस्था के द्वारा ही ग्राहकों से राशि प्राप्त कर पाएंगे. किसी भी बैंक शाखा में जाने की, QR कोड बदलने की या अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है.
1: Crude oil prices declined today as exports from West Asia increased and G7 nations pledged to boost supplies. Brent crude was trading 0.4% down at $101.88 per barrel. West Texas intermediate crude was trading 1.4% lower at $89.78 per barrel at the time of writing this report.
2: उधर भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज मामूली बढ़त से 1,48,198 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. चांदी 1.5% के उछाल से 2,24,157 रुपए प्रति किलो पर थी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आप आए शिशिर और हमारे श्रोताओं को आपने बहुमूल्य जानकारी दी.
0: धन्यवाद.
1: थैंक यू शिशिर जी. एंड बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस, benchmark domestic indices rise, Sensex adds over 450 points, Nifty settles above 22,550. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure, and Asian stock markets end in the positive territory. That's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गे पामला के बीच आज नई दिल्ली में बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश

0: निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी करेंगी। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास करती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पहमला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। नई दिल्ली में आज म्यूनिक सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके कि ये बदलाव किसने किए। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। 2026 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया गया। तीनों वैज्ञानिकों को ऑप्टोजेनेटिक्स के जुड़ी खोजों के लिए यह सम्मान मिला है। इस तकनीक से प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय या बंद किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिकों को याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। स्कॉटहोम में करोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली ने आज इसकी घोषणा की। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया गेम के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप में कल तक बारिश की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मामला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज भी देंगी। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास करेंगी।
1: The MOU on migration and mobility partnership.
2: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
1: And Department of Science and Technology, our DST.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देश अपेक्षा करते हैं कि भारत विश्व पटल पर इन देशों की चिंताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करे। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का विश्व के साथ जुड़ने का व्यापक दृष्टिकोण देश को अमेरिका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है। उन्होंने अमेरिका को भारत का प्रमुख रणनीतिक और रक्षा साझेदार तथा सबसे बड़ा आर्थिक और व्यापारिक भागीदार बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष न्यायालय ने इस बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। चिकित्सा के क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डायसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया गया है। तीनों वैज्ञानिकों को ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी खोजों के लिए यह सम्मान मिला। इस तकनीक से प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय या बंद किया जा सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया है। भारत ने 19वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम के सभी 5 सदस्यों ने पदक जीते। भारत ने प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल किया है। वियतनाम के हनोई में 25 सितंबर से शुरू हुई प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। भारत पदक तालिका में वियतनाम के साथ संयुक्त रूप से 3रे स्थान पर रहा। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility, exchange of young professionals and cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said both nations identified new possibilities for cooperation in military exchanges and defence production. He said they have also agreed to further deepen cooperation in nuclear energy.
4: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
3: Secretary West in External Affairs Ministry CB George addressed media in New Delhi this evening on bilateral meeting between the two leaders.
1: Both sides exchanged the

एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

நேரம் 8:15. ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் 100.1 MHz FM கோல்டு அலைவரிசை.

0: खान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पामला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
2: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
3: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
2: डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवर TST।
0: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
4: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में 5वें कॉटेल आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में कौटिल आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि AI ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा AI अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
6: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जब मिथानॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल

0: क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की कि केंद्रीय सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
2: आज MOUs में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है। उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एंक्लेव्स बनाने का, वहाँ पे 2000

0: अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
1: आज एमओयू में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एनक्लेव बनाने का, वहाँ पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहाँ से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहाँ पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी एक्सपैंड कर वहाँ से भी एयर ऑपरेशन को शुरू करने का एमओयू में शामिल किया है।
0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने की संभावना है।
2: इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ 3 विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 PhD स्कॉलर्स को PhD का सर्टिफिकेट देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
3: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवम्बर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
4: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
5: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
3: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस

0: को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
2: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिस नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइसेरोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हिगमैन जर्मनी के बायोफिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में डिजिटल युग में ई कचरे की चुनौतियां, समाधान और भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियां नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and Switzerland signed 5 pacts to strengthen cooperation in transport technology, infrastructure and mobility, identify new avenues for defense cooperation and deepen collaboration in nuclear energy. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar says, India's multi-alignment approach enables engagement with major global powers, including US, Russia and China. First cargo vessel since independence sails from Assam to Bangladesh via Brahmaputra, reviving international trade route after 80 years. West Bengal to get 4 new airports in 2 years to strengthen regional air connectivity as the centre and state sign MOU. And German and US scientists win Nobel Prize in Medicine for breakthrough technique unlocking mysteries of the brain. And now the news in detail. India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said, during their talks, the two sides identified new avenues for defence cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
4: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी

नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या है वो एक चीज जो हमारे सबसे करीब रहती है? जाहिर है आप कहेंगे हमारा स्मार्टफोन, लेकिन इसके अलावा लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, हेडफोन, हमारी जिंदगी इन गैजेट्स के बिना जैसे अधूरी सी हो गई है। साथ ही एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन वगैरह ने हमारी जिंदगी को आसान तो कर दिया है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है दोस्तों कि जब ये गैजेट्स पुराने हो जाते होंगे, खराब हो जाते हैं, तो आखिर कहां जाते हैं? हर साल दुनिया भर में करोड़ों टन ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा हो रहा है। आज हमारा देश और पूरी दुनिया इस डिजिटल कचरे के पहाड़ के नीचे जैसे दबती सी जा रही है, और रिसाइकलिंग की सही व्यवस्था न होना, जागरूकता की कमी और गैजेट्स को कचरे में फेंक देने की हमारी आदत, इसने एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके लिए खड़ी कर दी है। इस कचरे में मौजूद लेड, मर्करी और कैडमियम जैसी जहरीली धातुएं हमारी हवा, हमारी मिट्टी और पानी को जहरीला बना रही हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जहां समस्या है वहीं समाधान भी है। अगर हम जागरूक हो जाएं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के मंत्र को अपनाएं और अपने ई कचरे को सिर्फ अधिकृत रिसाइकलर्स को ही सौंपें, तो शायद हम इस बड़े संकट को बहुत हद तक टाल सकते हैं। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम गहराई से समझेंगे कि ई कचरे की ये चुनौती आखिर कितनी गंभीर है और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमारे पास इसके क्या समाधान है। और आज ऐसी ही बातों की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ई वेस्ट रिसाइकलिंग विशेषज्ञ मयंक सिन्हा जी को। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत।

0: अभिनंदन मयंक जी।
1: धन्यवाद।
0: और दोस्तों, हमारा आज का विषय जो हमने पहले ही आपको बताया भी है वो है डिजिटल युग में ई वेस्ट चुनौतियां, समाधान और आगे की राह। और हम आपको बता दें, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारे नंबर हैं 2331-08-1 2371-7117 और 2371-7106 और इसके अलावा 2331-44-44। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर हैं तो इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें, यदि आप लैंडलाइन से हम पर संपर्क कर रहे हैं तो। व्हाट्सएप नंबर है हमारा दोस्तों 9289-094-044। तो इस पर आप लिख करके हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की चर्चा का सिलसिला। और मैं देख रहा हूं कि अभी हमने आपसे बात शुरू ही की कि हमसे जुड़ गए एक श्रोता रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी। जी वाजपेयी जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा।
2: नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि इलेक्ट्रिक कचरा जो है रिसाइकलिंग कैसे किया जाएगा।
0: जी आप अपना सवाल एक बार दोहराएंगे।
2: मैं ये कहना चाहता था कि इलेक्ट्रिक कचरा जो है, वेस्टेड जो है, इसको रिसाइकलिंग कैसे करेंगे।
0: इलेक्ट्रिक कचरा जो है इसको रिसाइकल कैसे करेंगे, ये इनका प्रश्न है। जी
2: जी, जी।
1: देखिए, आप अगर अपना एसी, फ्रिज, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे तो वो किस से बना है, वो मेटल से बना है, उसके अंदर चिप्स हैं। तो जैसे मैं अगर आपका फ्रिज देख लूँ तो फ्रिज में लोहा है, एलुमिनियम है, कंप्रेसर है जिसमें कॉपर है, उसमें जो सर्किट है उसमें गोल्ड और सिल्वर भी है, तो ये सारे मेटल्स हैं। तो रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि क्या हम जो आपके पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसको साइंटिफिक तरीके से तोड़ें। उसके बाद अलग अलग किस्म के प्रोसेसेस हैं, जैसे हम इंजीनियरिंग में करते हैं कि मेटल्स जो हैं कुछ मैग्नेटिक होते हैं तो उनको मैग्नेट से अलग करें, कुछ मेटल्स हैं जो कुछ कुछ अलग अलग केमिकल में डिसॉल्व होते हैं, हम उससे अलग करें। तो इस तरीके से बड़े बड़े प्लांट, फॉर्मल रिसाइकलिंग जो प्लांट हैं उसमें ये मेटल्स, जिस जो आपके गैजेट जिस मेटल से बने हैं वही मेटल उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो मेटल्स वापस, वो लोहा, वो पदार्थ वापस जो मैन्युफैक्चरर हैं जो नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको दिए जाते हैं। तो आप समझिए, रिसाइकलिंग बहुत टेक्नोलॉजी के साथ है, बहुत बड़े स्केल पे होता है और आपके सारे जो मेटल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और फिर नए प्रोडक्ट में डाले जाते हैं।
0: जी, दरभंगा बिहार से हमसे जुड़ चुके हैं हमारे श्रोता मोहन पासवान जी। पासवान जी, कहिए क्या प्रश्न है आपका।
3: इकट्ठे प्रणाम सर।
0: जी जी,
3: हेलो, इकट्ठे प्रणाम सर।
0: जी नमस्कार। नमस्कार, कहिए
3: सर। ई कचरा प्रबंधन में होने वाले कमी से किस प्रकार से लोग बच सकते हैं सर। सर, गांव में ई कचरा से होने वाले हानि से बचने के लिए गांव के लोग जैसे कि डिजिटल सामान और कुछ सुई इस प्रकार के जो दिए जाते हैं उसे बचने के लिए क्या करें सर।
0: जी, तो इनका प्रश्न सिन्हा जी गांव को लेकर है, खास तौर पर कि जो गांव में जो हमारी आबादी रहती है वो कैसे ई कचरे की इस समस्या से निजात पा सकती है।
1: देखिए, गांव में, छोटे शहरों में, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो कलेक्ट कैसे किया जाए। अब हम सबको पता है कि जब कोई अपना को

0: कोई भी टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल मोबाइल को छोड़िए, एसी हो, जो हम नया खरीदने जाते हैं, तो हमें उसके लिए दुकानदार कोई वैल्यू देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसमें से, जैसे मैंने पिछले सवाल के बारे में बताया, उसमें से मेटल जो है, लोहा कॉपर निकलता है और उसकी एक मूल्य है। अब दिक्कत ये है कि गांव में जो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो ई वेस्ट हो, वो इकट्ठा कैसे किया जाए, और वो इकट्ठा हो के रिसाइकल इंडस्ट्री से तक कैसे पहुंचा जाए। तो इसमें मुझे लगता है हमें लोकल जो म्यूनिसिपल है, या जो ब्लॉक में है, या जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ मिलके, पंचायत है, मिलके एक हमें पूरा एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि ये सारा अच्छे से इकट्ठा भी हो और फिर ये रिसाइकलर के पास पहुँचे। जब ये पूरा सिस्टम आएगा, तब मेरे ख्याल से ये होगा। तो ये जुड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये पूरा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा और सरकार के साथ जुड़ना पड़ेगा। सरकार की बहुत पॉलिसीज़ हैं, पर शायद वो आप तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो पक्का ये होगा।
1: जी, हमारे एक और श्रोता सासाराम बिहार से हैं, अमित उपाध्याय जी। अमित जी, कहिए, क्या है प्रश्न आपका?
2: जी नमस्कार मेरे सारे, आपको भी और आपके जितने भी विशेषज्ञ हैं। मेरा दो सवाल था, ये सवाल था कि जैसे कि जितना भी कचरा हम वो फैलता है, इसको मतलब क्यों नहीं जैसे व्यापक तौर पर एक प्रचार प्रसार हो जाता कि जन जन तक लिए पहुंच जाए, पहुंच सके। जैसे कोई भी चुनाव होता है या कोई भी ऐसा कैंपेन होता है, सरकारी कैंपेन, तो इसको हम लोग ऐसे टाइप के व्यापक तौर पर इसको प्रचार प्रसार करते ताकि गाँव गाँव तक पहुँच जाए। और दूसरा सवाल ये था कि जो हम लोग उपग्रह में जितना भी हम लोग छोड़ते हैं आकाश में, तो बहुत सारा वो एक समय 4 साल या 5 साल के बाद वो उपग्रह में हमेशा वो घूमते रहता है, तो वो भी कचरा है, तो बहुत सारा का तो कचरा आकाश में घूम रहा है, तो उसको निपटान के लिए कैसे क्या किया जाए क्या, ताकि वो धीरे धीरे नष्ट हो जाए, वो भी कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी के लिए खतरा है। जी
1: जी तो आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल बहुत वाजिब है, और हम तो अभी घरेलू ई वेस्ट की ही बात कर रहे थे, आप तो अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं बिल्कुल, तो ये तो हमारे विशेषज्ञ ही इस विषय में बताएंगे। जी
0: देखिए, अंतरिक्ष का जो मामला है, शायद ये मेरे भी नॉलेज से बाहर है, क्योंकि जो ये सैटेलाइट हैं, जो ये यंत्र आसमान में जा रहे हैं, स्पेस में हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद इस पे अभी रिसर्च चल रहा है, इस पे सब देश कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या किया जाए, पर ये बहुत सही सवाल है, इस पे थोड़ा हमें भी स्टडी करना पड़ेगा, तब हम आपको इसका जवाब दे पाएंगे।
1: जी, तो दरअसल एक ऐसा सवाल है, हालांकि हमारे एक और श्रोता, पहले इनका सवाल ही ले लिया जाए, फिर मैं अपना प्रश्न आपके सामने रखूंगा सेना जी। ये हमारे श्रोता हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से, योगेश जी। तो योगेश जी, कृपया कहिए, क्या प्रश्न है आपका?
3: नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।
3: मेरा प्रश्न रहेगा कि ई वेस्ट को लेकर, जैसे कि हमारे गांव में भी इसके बारे में जागरूकता का अभाव रहता है, तो सबसे पहले जरूरत तो ये रहेगी कि लोगों को ई वेस्ट के बारे में जागरूक किया जाए। जैसा कि आपने बताया कि ई वेस्ट को रिसाइकिल करके भी हम ई वेस्ट के खतरे से बच सकते हैं, लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि ई वेस्ट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, और हमारे पास जो ई वेस्ट मतलब ये जनरल में वेस्ट को कलेक्ट करने आते हैं, वो इस तरह के वेस्ट को लेने से ही इनकार कर देते हैं, तो ऐसे में ये ई वेस्ट एनवायरमेंट में चला जाता है, पानी में चला जाता है, नदियों में जाता है, प्रदूषण फैलाता है, इसके भीतर की जो हानिकारक धातुएं हैं और केमिकल्स हैं वो हमारे वातावरण पर बुरा प्रभाव डालती हैं, तो ऐसे संबंध में इसके डिस्पोजल के लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि लोगों में जागरूकता का अभाव है, लोग वेस्ट को अलग अलग नहीं करते, चाहे वो केमिकल हो या ई वेस्ट हो, उसको इकट्ठा ही कर देते हैं, सेग्रीगेशन की कोई उनकी समझ नहीं होती है, तो मैं चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी के बारे में भी बताएं जो इस तरह की जागरूकता का संदेश देती हो, ताकि हम ई वेस्ट के खतरे से बच सके।
1: जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, क्योंकि नदियां हमारी तमाम जो हैं वो पर्वतों से आती हैं, और आप पर्वतीय प्रदेश से बोल रहे हैं, तो वहां से जब पानी आता है तो वो समझिए कि

0: सारे में जो वो व्याप्त होता है, तो उसके साथ अगर उसमें कुछ विषैले तत्व होंगे तो वो सारे क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित करेंगे। और सिन्हा जी, हाँ आपसे।
1: नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगा कि जो ई वेस्ट है, इसके तीन रूप में दिखा सोचता हूँ। एक है कि जो हमने बात की एनवायरनमेंट की, प्रकृति की, ये सबको पता है कि ये अगर पानी में हमारे खेतों में हमारे ग्राउंड में जाएंगे, इससे पोल्यूशन होता है, इसीलिए इसकी रिसाइकलिंग एक फॉर्मल एक वैज्ञानिक प्लांट में होनी चाहिए ताकि ये ना हो। दूसरी चीज़ है कि जो इसकी रिसाइकलिंग करते हैं, क्योंकि ये हाथ से रिसाइकलिंग हो रही है, ये इनफॉर्मल सेक्टर में रिसाइकलिंग हो रही है, बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, महिला भी इन्वॉल्व्ड है, तो एक हेल्थ एस्पेक्ट भी है जो इसकी रिसाइकलिंग कर रहे हैं, तो ना कि हमारी हेल्थ पर इनकी हेल्थ। तीसरी बात ये है कि जो ये मेटल्स निकल रहे हैं, जैसे मैंने बताया कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, स्टील है, बहुत सारी जो मेटल्स हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हम इम्पोर्ट करते हैं, ये हम बाहर से लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी जो फॉरेन करेंसी है जो इसमें जाती है, तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल हित के लिए भी हैं। तो ये तीन एस्पेक्ट हैं। आपने पूछा कि सरकार की क्या पॉलिसी, मुझे खुशी है कि लास्ट पिछले 4-5 साल में सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं, शायद हमारे बाकी श्रोताओं को भी इंटरेस्ट हो, बट सिंपल तरीके से जो एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने बहुत अच्छा एक पोर्टल बनाया है जिसमें जितने रिसाइकलर हैं, जो साइंटिफिक पूरी वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकलिंग कर रहे हैं, और जितने मैन्युफैक्चरर हैं, जो हमारे ब्रांड हैं, जो हमें मोबाइल बेचते हैं, एसी बेचते हैं, वॉशिंग मशीन बेचते हैं, उन सबको जोड़ा है। और बहुत ही सिंपल फिलॉसफी है कि अगर किसी ने मान लो 1 लाख वॉशिंग मशीन बेचे, तो उन्होंने बोला है भाई 7 साल में ये वॉशिंग मशीन रिसाइकल होने चाहिए, और उसमें उन्होंने एक कोटा बनाया, एक टारगेट बनाया है जो सारा डेटा ड्रिवन है। और वो अगर वो मैन्युफैक्चरर, वो ब्रांड अगर नहीं करेगा, तो उस पर बहुत बड़ी पेनल्टी है, फाइनेंशियल पेनल्टी है, उस पर बहुत सारे और रिस्ट्रिक्शन है। इसीलिए अब जितने भी ब्रांड हैं, वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि जो बेचें वो जब पुराना हो जाए, रिसाइकल हो जाए, कलेक्शन करें। और उन्होंने ये भी बोला, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो चाहते हैं जो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, इसको बढ़ावा मिले। तो उन्होंने बोला अगर आपका कोटा है मान लीजिए 1 लाख टन, आप नहीं मीट कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई ज़रिया नहीं है वापस लाने का, आप बनाइए, तो वो कोटा आप रिसाइकलर से ले सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप जो रिसाइकलर हैं उनको भी आप इनकरेज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये सारा अच्छे तरीके से वापस रिसाइकल हो, और इससे ये इंडस्ट्री डिवेलप हो रही है। और लास्ट सवाल ये है कि कैसे आप तक पहुँचें, जैसे मैंने पिछले सवाल का भी जवाब दिया, हम सबको मिलके जुड़ना है, जो दूर दराज के इलाके हैं, कैसे हम सरकार के साथ, लोकल एनजीओस के साथ मिलें, और ये रिसाइकल इंडस्ट्री जो शायद बड़े शहरों में है या इंडस्ट्रियल एरियाज़ में है, वहाँ तक पहुँचें, और आप भी इनोवेशन करिए, आप भी रिसाइकलर बनिए, तो अपने एरिया के लिए आप भी बहुत ज़रूरी काम करेंगे।
0: बिल्कुल, आप भी अपने मित्रों में इस विषय में चर्चा कीजिए। और जहाँ तक कि हमारे एक पहले श्रोता ने भी कहा था कि क्या इसके बारे में कोई प्रचार अभियान है, तो हम आज जो ये चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ये भी तो उसी प्रचार अभियान का एक हिस्सा है, जिससे लोगों में जागृति आए, और निसंदेह आपके जो ये सवाल हैं महत्वपूर्ण, वो भी जागृति लाने में सहायक हैं। और नई दिल्ली से हमारे श्रोता हैं जगदीश जोशी जी। कहिए जोशी जी, क्या प्रश्न है?
2: हाँ जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
2: नमस्ते एंकर साहब, आपको भी नमस्कार, और जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनको भी नमस्कार।
0: जी प्रणाम, नमस्कार।
2: तो एक तो क्वेश्चन तो मैं 2-3 छोटे छोटे पूछूंगा। आपके मंच के, जो आपका बड़ा मंच के माध्यम से अपने युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ, विशेषकर मैं मोबाइल के जो यूजर है, कि जब तक हम मोबाइल को चला रहे हैं वो तो खैर ठीक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मोबाइल हमें चलाने लगा है, तो ये एक मैसेज

0: है। और दूसरी बात यह है कि जैसे गवर्नमेंट कई जगह कैंप लगाती है, चाहे वो अभी जीरो बैलेंस के खाते के लिए लगाए थे या मतदाता सूची के लिए लगा रखे हैं, तो आपको लगता नहीं कि गवर्नमेंट को ये ई कचरे के लोगों को अवेयर करने के लिए गांव-गांव में कैंप लगाना चाहिए या गवर्नमेंट लगाती है आपकी जानकारी में हो पंचायत में?
1: आपका कहना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि इसी जागृति अभियान के तहत तो हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आपका जो प्रश्न है वो हम तक पहुंच गई है आपकी जिज्ञासा, और मैं समझता हूं कि उससे खास तौर पर जो सवाल हमें समझ में आता है वो ये है कि देखिए जब हमारे सिन्हा जी जो आम नागरिक हैं शहरों के गांवों के, वो चाहते हैं दिल से कि हम अपना ई कचरा जो है वो रिसाइकल के लिए दें, लेकिन क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐप मौजूद है जिस पर वो संपर्क करके ये कह सकें कि हमारे पास ये ई कचरा है और इसको आप ले जाइए, और क्या उन्हें उसके लिए कुछ भुगतान भी प्राप्त हो सकता है?
2: हाँ है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है और रिसाइकलर्स अब उन बढ़ रहे हैं जो फॉर्मल रिसाइकलर हैं, तो वो चाह रहे हैं कि वो सीधा कस्टमर से या जो हमारे कंज्यूमर्स हैं जो आप हैं उनसे डायरेक्टली उठाएं, और इसीलिए अब नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। जिस तरीके से हम खाना अभी घर से कोई हमें डिलीवर कर देता है, हम कुछ ऑनलाइन ख़रीदते हैं हमारे घर तक आ जाता है, तो प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। उनका नाम मैं अगर लूँगा तो शायद मैं किसी को फेवर करूँगा, पर जैसे आप अगर ऑनलाइन जाएंगे, आप सर्च करेंगे मुझे अपना पुराना एसी बेचना है, फ्रिज बेचना है, तो शायद आपके पास कोई प्लेटफॉर्म आए, जैसे सेल स्मार्ट एक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म हैं, आप किसी बड़े रिटेलर के यहाँ दुकान में जाएंगे तो उनके पास बॉक्स होता है, तो प्लेटफॉर्म आ गए हैं, उसको अभी आपको ऑनलाइन जाना है, आपको ढूंढना है और आपको मिलेंगे। और सरकार भी गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है अपने अलग अलग मिनिस्ट्री से अपने डिपार्टमेंट से कि इसका प्रचार करें, कैंप्स रन करें, बहुत छोटा है जो अभी हम कर रहे हैं बट पूरा फोकस है तो ये पहुंचेगा आप तक।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमने गौर किया जब आपने कहा कि अक्सर जब हम मोबाइल फोन के और ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इनके स्टोर पर जाएं तो एक ऐसा कॉर्नर ज़रूर होता है जहां वो कहते हैं कि यहां आप अपना जो पुराना ई वेस्ट है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन निसंदेह इसको और बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने बताया कि ऐसे ऐप्स मौजूद हैं और आप उन्हें सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। महाराष्ट्र ठाणे महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं गुरुनाथ। गुरुनाथ जी कहिए, क्या प्रश्न है आपका?
3: जी सर नमस्कार।
1: नमस्कार
3: सर, मेरा क्वेश्चन है, अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं ये कचरा समस्या तो है, लेकिन सर जैसे मतलब घर पे इसको डिस्पोज किए जाए, स्क्रैपिंग वाले तो बहुत मुश्किल से लेते हैं ये जो कुछ गैजेट होते हैं, तो क्या घर पे कुछ जो डिस्पोज कर सकते हैं? और मेरा दूसरा सवाल है, इसमें से जो जो खतरनाक किरणोत्सर्ग निकलते हैं, क्या आदमी के लिए मतलब कौन से डिजीज हो सकते हैं इसके बारे में? थोड़ा मैं ये भी सुना है कि कुछ डिजीज इसके वजह से आदमी को हो सकते हैं। थैंक यू
1: जी। आपके दो प्रश्न हैं, पहला तो आपने कहा कि घर से ही हम कैसे उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं, तो वो जैसा कि बताया है अभी आपको कि इसके लिए ऐसे एप्स मौजूद हैं, आप उनको ऑनलाइन सर्च करें, उनसे संपर्क करें, या फिर जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ जब आप जाते हैं खरीदने के लिए तो वहाँ भी ऐसी सुविधा दी जाने लगी है जहाँ आप अपने ई वेस्ट से निजात पा सकते हैं। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आपने जो पूछा कि नुकसान जो होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं और कौन से ऐसी धातुएं हैं ख़ास तौर पर ऐसे विषैले तत्व हैं, उनके विषय में हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको सटीक जानकारी देंगे।
2: देखिए ये तो आपको पता है कि आप खाने में अगर पेस्टिसाइड डालेंगे, केमिकल डालेंगे, कोई भी केमिकल हो वो हानिकारक तो होगा, कुछ कम कुछ ज़्यादा। तो हमारे मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में भी जो बैटरी हैं, जो उसमें कैडमियम हो सकता है, लेड हो सकता है, कोई भी मेटल केमिकल हो सकता है, कुछ बहुत हानिकारक हैं कुछ कम हैं। और ये हमको पता है कि जब ये पानी में जाता है, ये हमारे फूड में आता है

है तो बीमारियां कैंसर तक की भी होती हैं। इसीलिए ये मतलब ये मामूली बात नहीं है, बहुत ही ज़रूरी बात है कि हमें इसको सॉल्व करना है। और बिल्कुल घर पे आप मत रिसाइकलिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये केमिकल्स हैं और ये एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, ये रिसाइकलर के पास जाना चाहिए। बट यस, ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं अगर ये रिसाइकल नहीं होगा। और

0: प्रकार की वस्तुएं आती हैं जो हम आपको बता ही चुके हैं, और ये कहते हैं कि इसे किस प्रकार से रिसाइकल किया जाए ये भी हमने आपको बताया। फिर इनका जो प्रश्न है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कहते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से अवेयर किया जाए, ई वेस्ट डीकम्पोज होता है क्या और होता है तो कैसे? जी
1: नहीं, बच्चे तो आई थिंक आजकल बहुत जागरूक हैं, हमें पता है कि वो शायद माँ बाप से ज़्यादा जागरूक हैं, वो माँ बाप को बताते हैं और अगले 50-100-80 साल तो उनको जीना है
0: जी। और ये बहुत अच्छी बात है कि अब ये पाठ्यक्रम का हाँ, भी एक अंग हो गया है कि उनको जागरूक किया जा रहा है जी।
1: और देखिए, जैसे मैंने कहा, ये है धातु जो आपके मोबाइल में है, लैपटॉप में है, ये है केमिकल, तो ये तो आपको भी पता है कि धातु तो ज़मीन से ही आए हैं, ये वापस जाके ये डिसॉल्व तो नहीं होंगे, ये केमिकल वापस डिसॉल्व नहीं होंगे, तो इसीलिए अगर हम कोशिश करें कि 100% जो आया है वो रिसाइकल हो जाए, फिर वो नए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, तो ना तो हमें नए माइनिंग करनी पड़ेगी ज़्यादा, ना हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो ये पूरा जो एक गोला है ये बनेगा, तो ये धातु ये केमिकल्स तो आएंगे ही नहीं। तो इसीलिए अगर ये हम कोशिश करें कि हम इसको उस तरीके से सोचें, प्लास्टिक का जैसे हमें पता है कि अगर हम इसको रिसाइकल करेंगे, कांच का पता है रिसाइकल करेंगे, मेटल की भी वैल्यू है, मेटल का भी एक मूल्य होता है, और ये अगर रिसाइकल होगा तो वापस जो नए प्रोडक्ट हैं उसमें यूज़ होगा
0: जी। शिमला हिमाचल प्रदेश से राकेश हैं हमारे साथ जी। राकेश जी, कहिए आपका प्रश्न
2: जी।
0: क्या?
2: जी नमस्कार, मैं कोटाई शिमला हिमाचल प्रदेश, और मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम कोई भी चीज रिसाइकल करते हैं तो किस तरह से हमें प्रावधान सावधानी रखती है, और दूसरी बात ये मेरा, जैसे कि प्लास्टिक की चीजें, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें हैं, जैसे टूटी हुई कुर्सियां हैं, तो इसको जो है हिमाचल में जैसे तापमान कम रहता है या क्या बोलते हैं, जैसे बाग बगीचे में फर्क ना पड़े, तो इस चीजों को जो है जो है किस तरह से हमें करना चाहिए प्लास्टिक की चीजों को?
1: देखिए, जैसे मैंने बोला, आप खुद तो रिसाइकल नहीं कर सकते, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये घर पे नहीं की जा सकती है, इसको आपको रिसाइकलर के पास भेजना है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे कांच हो, चाहे मेटल हो, चाहे आपका मोबाइल हो, तो आपको ढूंढना है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे आपके लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे जो बड़े बड़े दुकानदार हैं अगर उनके पास ड्रॉप बॉक्स है वहाँ पे आप डालिए, अगर वो वैल्यू दे सकते हैं, मूल्य दे सकते हैं, दीजिए, नहीं तो नहीं दे सकते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि उनका भी एक खर्चा है उसको लेके किसी रिसाइकलर के यहाँ पहुँचाने का, और वही मेरे हिसाब से सही राह होगी, घर पे बिल्कुल कोशिश भी नहीं करें और आप कर भी नहीं पाएंगे
0: जी। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की है, और आप भी इस बात को ख्याल रखिए कि खुद ई वेस्ट को रिसाइकल करने की कोशिश न करें, क्योंकि उसमें निसंदेह कई ऐसे पदार्थ होते हैं, कई ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, और इसके लिए विशेषज्ञता की जरूरत है। सिन्हा साहब, ये बताइए कि रिपेयरिंग जो है, यानी मरम्मत है और दोबारा इस्तेमाल कर लेना चीज़ों को ठीक करके, जैसा कि विकसित देशों में ऐसा देखा जाता है कि रिसाइकलिंग शॉप्स हैं, तो ये यदि चलन में आए तो इससे कितनी मदद मिल सकती है इस ई वेस्ट पर काबू पाने में?
1: बिल्कुल, सरकार तो ये चाहती है, जैसे आपने बोला रिसाइकल, रीयूज़, रिपेयर, तो ये तो सरकार चाहती है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये करें, पर इसमें सिर्फ एक तरह से नहीं सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, अब हमको पता है कि शहरों में गर्मी हो रही है, समर्स में ये एसी और गर्म करते हैं, हमको पता है कि पुराना एसी फट भी सकता है, हमको पता है कि उसमें जो गैस होती है वो बहुत पुरानी होती है, बिजली की खपत ज़्यादा होती है जो देश के लिए ठीक नहीं है, तो आपको रिपेयर करना है, रीयूज़ करना है, पर ये भी समझना है कि हर इलेक्ट्रॉनिक की एक लाइफ होती है, एक कार्य होती है, उसके बाद वो रिसाइकल होके नया बने तो शायद सबके लिए अच्छा है, बट बिल्कुल रिपेयर करिए। ये तो हमारे देश में, हमारे अंदर में प्रथा भी है कि हम फेंकते नहीं हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो रीयूज़ करते रहें, पर ये बहुत

0: महत्वपूर्ण सवाल है और आपको अपने जजमेंट से, अपने राय से सोचना है कि आप इसका क्या करें।
1: जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ऐसे कौन से 3 कदम आप सुझाना चाहेंगे जिनको उठाते हुए, अपनाते हुए आम नागरिक जो है इस समस्या के समाधान में बहुत ही सहायक हो सकते हैं?
0: देखिए, पहले तो आपको इसको कचड़े में नहीं डालना है, क्योंकि जब आप कचड़े में डालते हैं तो जो बाकी कचरा है वो भी रिसाइकल नहीं हो पाता, किसी को उसको अलग करना पड़ेगा, जैसे प्लास्टिक को और खाने को अलग करना पड़ता है। दूसरी बात है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे किसको दें कि ये रिसाइकल हो पाए। तीसरी बात यह है कि आपको जागरूक करना है अपने आप को और अपने बच्चों को और सबको, ताकि वो समझें और वो इस पे आगे ठीक डिसीजन ले पाएं।
1: जी, तो दोस्तों समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल जरिए से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ई वेस्ट रिसाइकलिंग विशेषज्ञ मयंक सिन्हा जी को स्टूडियो में आने के लिए, श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हार्दिक धन्यवाद हमारी ओर से। और दोस्तों इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक हो रहा है समाप्त। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे फिर मिलेंगे आपसे। मुझे यानी मुनीश शर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहामला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहामला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के Form 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के Form 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे Form 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति

अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हेगेमन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने आज इसकी घोषणा की है। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधि को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। पीटर हेगेमन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रो डिप्सन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: related to SIR in Bihar was issued with the unanimous approval of the commission on the 24th of June last year. Earlier, the Apex Court clarified that it has not approved any changes to Form 6 being used by the Election Commission during the SIR of electoral rolls. The stage is set for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, along with one Lok Sabha constituency in Assam. Polling for all 6 seats will be held tomorrow, while counting of votes will take place on Friday. The assembly seats going to polls are Madurantakam and Dharapuram in Tamil Nadu, Tattanachavadi in Puducherry and Rejinagan and Nandigram in West Bengal. In Assam, voting will be held for the Nagaon Lok Sabha constituency. The National Statistics Office, NSO, of the Ministry of Statistics and Program Implementation has conducted the first ever All India survey on household travel. The survey covered 14,274 villages and 10,377 urban blocks and collected information from around 4,92,000 households covering over 20,34,000 people. American scientist Carl Deisseroth and German scientist Peter Hegemann and Georg Nagel won the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine for developing a breakthrough technique to decode the inner workings of the brain. This method, known as optogenetics, acts as a light-sensitive switch, allowing scientists to potentially map which cells are responsible for which function in the brain. The Nobel Assembly of Sweden's Karolinska Institute made the announcement today. And IMD has forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, South Interior Karnataka and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. Weather agency has also predicted thunderstorm accompanied with lightning and gusty winds over northern India. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar, Akashvani se Vishwa Darpan ke saath main Vaishnavi. मुख्य समाचार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमेरिका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिलती है। यमन की सेना ने आज बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के पास हूती के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू की। और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों कार्ल डाइसरिथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल को मस्तिष्क गतिविधियों पर शोध के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहलमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहलमलान से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहलमलान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती है। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।

0: MOU on Migration and Mobility Partnership.
1: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ.
2: और ब्यौरा के साथ है हमारे संवाददाता.
3: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही. उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की. दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई. दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की. यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है. भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की. स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है. सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाए. श्री जयशंकर ने आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है. विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है. उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है. नई दिल्ली में आज म्यूनिख सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया. विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं. विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है. यमन में सरकारी बलों ने आज बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के पास हूती ठिकानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू की. सरकारी अधिकारियों के अनुसार सरकारी बलों ने ताइज प्रांत के दक्षिण पश्चिमी दुबाब इलाके में आगे बढ़ते हुए कई हूती ठिकानों पर कब्जा कर लिया और हूती लड़ाकों तक पहुंचने वाले एक आपूर्ति मार्ग को भी रोक दिया. ये कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब हूती विद्रोहियों ने दक्षिण पश्चिमी यमन में कुछ और इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया था. सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मलिकी ने कहा कि यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थन में करीब 100 लड़ाकू विमान अभियान में शामिल है. हालांकि हूती समर्थित अल मासिराह टीवी ने दुबाव की और सैन्य प्रगति की खबरों को खारिज किया है. चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरेट, पीटर हेगेमन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा. स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने आज इसकी घोषणा की. एक रिपोर्ट.
1: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है. ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है. इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है. इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है. पीटर हेगेमन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिन के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया. कार्ल डाइसरोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हेगेमन जर्मनी के बायोफिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरो साइंटिस्ट हैं. समाचार कक्ष से शक्ति सिंह.
2: बलोच छात्र संगठन BSO आजाद ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से छात्र नेता शब्बीर बलूच का पता लगाने का आग्रह किया है. शब्बीर को एक दशक पहले बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा जबरन गायब कर दिया गया था. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इस संबंध में लिखे गए पत्र में पाकिस्तान पर दबाव डालने का आग्रह किया गया है. पत्र में कहा गया है कि पाकिस्तान ने बलूच नागरिकों पर दमनकारी और हिंसक कार्रवाई की है. इसमें बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं सहित लाखों लोगों की हत्या भी शामिल है. दक्षिणी नाइजीरिया में आज एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इसमें 25 यात्री और 7 चालक दल के सदस्य सवार थे. हताहतों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है.

0: नाइजीरिया के विमानन मंत्री फेस्टिस केयामो ने बताया कि विमान नाइजीरिया के लागोस के लिए एक नियमित उड़ान पर था। ये ओंडो राज्य के इग्बो कोडा शहर में नदी के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत ने 19वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन किया है और भारतीय टीम के सभी 5 सदस्यों ने पदक जीते हैं। भारत ने प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल किया। वियतनाम के हानोई में 25 सितंबर से ये प्रतियोगिता शुरू हुई थी, जिसका आज समापन हुआ। प्रांजल दीक्षित, सुमंत गुप्ता, अक्षत श्रीवास्तव और अर्णव सहरावत ने स्वर्ण पदक जीते, वहीं हर्षिल अमित कुमार पटेल ने रजत पदक हासिल किया। भारत पदक तालिका में वियतनाम के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में 64 देशों के 307 छात्रों ने हिस्सा लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमेरिका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिलती है। यमन की सेना ने आज बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के पास हूती के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू की और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को मस्तिष्क गतिविधियों पर शोध के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। This is Akashwani. I'm Shagun Chopra with the World News. The headlines. India and Switzerland sign 5 pacts to strengthen cooperation in transport technology, infrastructure and mobility, identify new avenues for defence cooperation and deepen collaboration in nuclear energy. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India's multi-alignment approach enables engagement with major global powers, including US, Russia and China. Yemeni government forces launch counter-offensive against Houthis near Bab al-Mandeb Strait. 3 scientists, Carl Dysaroth, Peter Hegemann and Georg Nagel, win Nobel Prize in Medicine for research into brain activity. And now the news in detail. India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said during their meeting, the two sides identified new avenues for defence cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: Secretary West in External Affairs Ministry CB George addressed media in New Delhi this evening on agreements signed between the two countries.
3: Both sides exchanged the following memorandum of understanding agreements and letters of intent signed during the visit. 1. The MOU on migration and mobility partnership. 2. Agreement on exchange of young professionals. 3. MOU on mobility between the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research and the Ministry of Road Transport and Highways. 4. Letter of intent between Departments of Science and Technology and Swiss National Science Foundation. And 5. Implementation agreement between Zurich University of Applied Sciences and Department of Science and Technology, our DST.
1: Our correspondent has the details.
4: The discussions between Prime Minister Modi and the Swiss President were very wide-ranging. They reviewed the entire spectrum of India-Switzerland relations.

0: ப்ளீஸ் ஸ்டே டியூன்ட் ஃபார் தி நியூஸ் இன் ஹிந்தி.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई. इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया. ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है. यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है. इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे.
1: राष्ट्रपति पहमलान ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया. भारत में राष्ट्रपति पहमलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है. उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से भेंट की. डॉ. जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहमलान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा. निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं. आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है. सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था. आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है. न्यायिक अधिकार

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है. हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फ़ोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: जी नमस्कार, धन्यवाद.
1: और अब हेडलाइंस के साथ है निशित कुमार.
0: The benchmark domestic indices rise, Sensex adds over 450 points, Nifty settles above 22,550. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure, and Asian stock markets end in positive territory.
1: प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक तेजी में रहे. सेंसेक्स में आई 450 अंकों से अधिक की बढ़त, निफ्टी 22,500 के स्तर को पार कर गया. भारत और स्विट्जरलैंड ने यातायात तकनीक, मोबिलिटी प्रणाली और मूलभूत ढांचे में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर किए हस्ताक्षर और एशियाई शेयर बाजार बढ़त के साथ हुए बंद.

0: Before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब रुख करते हैं शेयर बाजार का. चार दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज लगभग 0.6% की बढ़त पर बंद हुए. सेंसेक्स 473 अंकों की तेजी दर्ज करता हुआ 72,282 पर बंद हुआ. निफ्टी 134 अंक बढ़कर 22,556 पर दर्ज हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक

0: 0.7% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक 0.5% की तेजी पर बंद हुए।
1: The benchmark domestic equity indices rose around 0.6% today, snapping a four-day losing streak. The Sensex gained 473 points to close at 72,382. The Nifty climbed 134 points to settle at 22,556. In the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index jumped 0.7% and the small-cap 100 index advanced 0.5%.
0: और सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 20 के शेयर आज बढ़त में रहे। सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयरों में आईटीसी 4.5%, एटर्नल 2.5% और भारती एयरटेल 2.4% के उछाल में रहे। वहीं सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो एचसीएल टेक 3.7%, एचडीएफसी बैंक 2% और सन फार्मा और इंफोसिस प्रत्येक 1.5% की गिरावट में रहे।
1: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 24 out of 28 sectors edged upwards. Among the top gainers, telecommunication jumped 2.1%, mid-small private bank rose 1.7% and FMCG added 1.5%. In contrast, hospitals shed 2.3%, healthcare fell 1.1% and insurance dropped 0.3%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,448 companies declined, 2,052 advanced and 260 remained unchanged.
0: और रुपए पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले मामूली मजबूती के साथ 96.30 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। इस बीच हमारे साथ हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उन्हें शामिल कर लेते हैं। जितेंद्र है जयपुर से, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए।
2: हाँ हाँ सर, आपका भी मैडम धन्यवाद। सर मेरा दो प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, मैं नाम तो नहीं लूंगा नियम के मुताबिक। एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसका र्यूमर कुछ दिन पहले आया था तो उसके काफी प्राइस डाउन हुए, अभी 700 पे चल रहा है, तो मैं उसमें पिछले 2-3 महीने से बाइंग कर रहा हूँ, तो क्या स्ट्रेटजी सही है पहला। और दूसरा, जो रजिस्ट्रार कंपनी होती है आईपीओ का जब आता है रजिस्ट्रार कंपनी, तो भी बहुत पुराना रजिस्ट्रार कंपनी है, उसका आईपीओ आया था तो उसमें मैंने लिया था तो 150-200% प्रॉफिट पे है, तो उसको क्या होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, क्योंकि वो रजिस्ट्रार कंपनी है तो चलेगा ही चलेगा कंपनी जैसे।
3: जितेंद्र जी, आपने शुरू में कहा कार्यक्रम के नियम के मुताबिक हम कंपनी का नाम नहीं ले सकते हैं और आपने दो खास कंपनी के शेयर के बारे में पूछा है, तो हम क्षमा चाहेंगे, हम उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते।
0: और आपकी एक छोटी सी टिप्पणी, आज जो हमने बढ़त देखी है बाजार में 4 दिनों के बाद, इसको आप कैसे लेते हैं? अगर थर्सडे को भी हम देखें तो एंड में 700 पॉइंट्स की रिकवरी हुई थी, सो क्या कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट लौट रहा है?
3: देखिए, दो वजह है। एक तरफ आप देखिए कि सऊदी अरब ने जो है वो तेल के दाम घटा दिए, तो वो एक अच्छी बात रही, लेकिन दोपहर होते होते एक खबर आई कि वहाँ पे पाइपलाइन बंद कर दिया गया क्योंकि उस पर हमला हुआ है, तो एक मिश्रित था। तो अगर वो खबर नहीं आती तो शायद आज शेयर बाज़ार और ऊपर जाता। तो एक तो आप कह सकती हैं कि इसका एक सकारात्मक रुख हमने देखा है। दूसरी तरफ क्या है कि बाजार बहुत नीचे आ चुका है और अब एक खरीदारी का, जिसे कहते हैं कि एक माहौल बन सकता है, क्योंकि अब निचले स्तर पर आपको बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो बहुत ऊंची कीमत पर थे, उनके भाव बढ़े हैं, तो उसका असर जो है आप देख रहे हैं कि आज बाजार में जो हमने सकारात्मक रुख देखा। और आपने बीते सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन देखे, उस दिन भी तेजी आई। और एक और जो हमने अच्छी चीज़ देखी है कि जो हमारे विदेशी निवेशक जो थे, जो अभी लगातार पैसा निकाल रहे हैं, बीते कुछ दिनों से उन्होंने नेट बाइंग करी है, तो ये ऐसे कारण है जिसका असर हमने देखा है। मूल रूप से आप कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो है वो हमारे अनुकूल हैं, और आप केवल भारतीय बाजार की बात नहीं करें, एशिया के तमाम शेयर बाजारों की बात करें, क्योंकि दक्षिण कोरिया आज बंद था उनका बाजार, बाकी जितने भी बात करें, चाहे चीन की बात करें, हांगकॉन्ग की बात करें, सिंगापुर की बात करें, वहाँ परिस्थिति सकारात्मक रही, तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ जब सकारात्मक होंगी तो बाजार में भी आपको सकारात्मक माहौल।
1: Shishir, you talked about the FIIs and FPIs kind of trying to make a comeback to the Indian markets. But if you look at the US bond markets, the treasury yields are still kind of, you know, pretty lucrative as compared to the Indian stock market. And of course, you're not talking about the Asian markets here. So do we really see MPC is also, you know, the outcomes of it will come in a couple of days. So how do you see it panning out? That is one. And of course,

0: Minister Modi said that India and Switzerland have taken several important decisions to enhance market access for Indian exports in Switzerland.
1: हमने भारत के एक्सपोर्ट्स का स्विट्जरलैंड में मार्केट एक्सेस बढ़ाने और दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे भारत के एग्रीकल्चर, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स की स्विट्जरलैंड में निर्यात बढ़ेगी और साथ साथ भारत के बायोटेक, लाइफ साइंसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम नए स्विस इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेंगे।
0: Shishiji, we already saw the India-EU FTA being signed, which was obviously, you know, termed as the mother of all agreements, trade agreements. Now this agreement with EFTA countries, four countries, if I am given to understand, Liechtenstein, Iceland, Switzerland, and Norway. These are the four countries. Now these are the four, a bloc within the EU, if I may say. So how do you see this? And of course, you know, today, the agreements which are signed between India and Switzerland, it adds to that. So how do you see this going?
2: इससे पहले कि हम आपकी प्रतिक्रिया लें, गुरुग्राम से हमारे श्रोता उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें।
3: नमस्कार मार्केट मंत्री, मेरा सवाल ये है कि अगर आज की डेट में एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो तो क्या लार्ज कैप्स सही रहेंगे या गोल्ड का इन्वेस्टमेंट सही रहेगा? और अगर आप एक प्रतिक्रिया और दे पाए कि मान लीजिए कोई 20% ऑल्दो मतलब 20% पेमेंट देके किसी अच्छे बिल्डर में एक बढ़िया फ्लैट बुक कर लिया जाए, ऑल्दो वो लिक्विड और अनलिक्विड वाली चीज जरूर है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रतिक्रिया देना चाहें तो।
4: देखिए, जो आपने पहला प्रश्न पूछा कि शेयर और सोना, देखिए मेरे हिसाब से आप दोनों में आप कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से अगर आपकी उम्र अगर 50 वर्ष से कम उम्र की है तो आप शेयर में उसका पोर्शन ज़्यादा रखिए। अगर आप 60% रख सकते हैं, 40% आप सोने में रख सकते हैं, और अगर आपकी उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा की है तो आप थोड़ा सा उसको पलटिए। और उसके अलावा ये भी है कि उसका एक हिस्सा आप ऐसे जगह पे लगाएं जो आपके लिए सुरक्षित जो है वो निवेश बन सके, जिसे हम डाकघर की बचत योजनाएं कहते हैं या बैंक के फिक्स डिपॉजिट है, वो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि क्या हम 20% दे करके एक फ्लैट बुक कर लें, देखिए निश्चित तौर पर घर में निवेश करना, चाहे वो आप उसको इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं या निवेश करने के लिए ले रहे हैं, एक अच्छा जरूर निवेश होता है। लेकिन ध्यान रहे कि आप जिस भी बिल्डर को चुनें वो एक विश्वसनीय बिल्डर हो, जिसकी डिलीवरी का रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसने काम अच्छा किया हो। क्योंकि दिक्कत क्या होती कि कई बार आप पैसा लगा देते हैं और उसमें अगर जितनी भी देरी होती तो आपका पैसा एक तरीके से फंस जाता है। तो अगर आप डिलीवरी वाले सिस्टम पे देखें कि यदि वो बेहतर हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। मेरे ख्याल से आप ये भी कर सकते हैं कि 100 को आप 3 हिस्सों में बांट दीजिए। एक, जैसा मैंने कहा, आपकी उम्र के हिसाब से शेयर और सोना। दूसरा विकल्प है शेयर, सोना और डाकघर की बचत योजनाएं। और आप पूरा का पूरा पैसा अगर रियल एस्टेट में ही लगाना चाहते हैं तो आप बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें
0: और बिल्डर रेरा अप्रूव भी हो।
4: बिल्कुल बिल्कुल
2: बिल्कुल।
0: नेक्स्ट कॉलर इज मोहक फ्रॉम फरीदाबाद। मोहक, वेलकम।
5: हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पैनलिस्ट। माय क्वेश्चन इज कंसीडरिंग द वोलेटाइल माइक्रो इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड, इज इट बेटर टू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक बॉन्ड्स एज कंपेयर्ड टू इक्विटी मार्केट्स?
4: Yeah, that's a good option, but I would say that it also, because I mean the prices at which the most of the value stocks are available, they are at a very lucrative, and you can get an opportunity to enter into those stock. So you can have some kind of hedging through the bond. I mean, bond is, use the bond as a hedging. So suppose that you have say 100 rupees, and if your age is say less than 40 years, then you can go for 60-40, 60 in the equity and the 40 in the bond. But if you are exceeding 50, then I would say that put 60 rupees in the, or 70 rupees in the bond, and then put remaining 30 rupees in the equity, because there you will have less time as compared to when you are less than 40 years. So this kind of equation you can say, and at any given point of time, if the value stock is available at a very low price, it is good to enter. You may have some kind of volatility, but if you are giving some time to the stock market, to your capital, then there is a good possibility of getting good return, because stock market is not just about investing money, it is also about investing patience.
2: And briefly, bond market mein risk

0: कम है?
1: बहुत कम होता है वहाँ पर। आपको मूल और ब्याज की एक गारंटी जो है सरकार की, अगर आप सरकारी प्रतिभूति में लगा रहे हैं तो आपको वहाँ मिलता है। अगर कंपनियों के बॉन्ड में आप लगा रहे हैं तो थोड़ा जोखिम होता है, अगर कंपनी डूब गई तो क्या होगा। लेकिन उस सूरत में भी जो कर्ज देने वाले होते हैं उनका पहला हक बनता है, जबकि शेयर में जो पैसा लगाते हैं उनका आखिरी में हक बनता है, तो वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प है।
0: अब हमारे अगले कॉलर है नई दिल्ली से अमित झा। अमित जी आपका स्वागत है, सवाल पूछें।
2: नमस्कार सर जी को।
0: जी नमस्कार।
2: सीना सर नमस्कार। सर
1: नमस्कार।
2: सर आपसे प्रश्न ये है कि अभी जो इस हफ्ते से Q2 के कंपनी का नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है सर, तो इसी हफ्ते दिग्गज आईटी कंपनी के भी रिजल्ट आने हैं सर, तो आईटी कंपनी का कैसा मतलब प्रदर्शन रह सकता है। और दूसरी चीज सर कि ऑटो और मेटल अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए आज की रैली में देखा जाए तो, और ऑटो सेल्स के पिछले दिनों आंकड़े जो आए थे सर वो खासा उतना तो वो निराशाजनक थे नहीं, लेकिन उसके बावजूद ऑटो सेक्टर की कंपनियां बहुत बुरी तरह से पीड़ित थी सर। धन्यवाद सर।
1: देखिए मेटल मेरे हिसाब से समय एक बहुत ही बेहतर विकल्प है, और मेटल कंपनियों के शेयरों में अगर मैं आज की बात करूं तो दो तीन कंपनियों के जो पहली तिमाही के नतीजे रहे हैं, वित्तीय नतीजों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कामकाज की बात कर रहा हूं, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो उसमें उम्मीद एक ज़्यादा है। ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए मुझे लगता है कि निवेशक त्योहारी मांग का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर देखिए अब अगले हमने 10 दिनों के बाद जो है हमारा नवरात्रि शुरू हो रहा है, उस समय में उसकी खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है, तो आप देखेंगे कि ऑटो में जो है वो वापसी एक होगी। और आज की रैली में भले उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि आज की रैली अगर आपने देखी होगी तो उसमें ज़्यादा जो योगदान था उसमें जैसे FMCG का योगदान था या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का योगदान था, वहाँ पर अगर आप IT सेक्टर बात करेंगे तो IT सेक्टर में नुकसान ही हुआ था। लेकिन मेरे हिसाब से जो तिमाही नतीजे आएंगे जो 10 और 11 से शुरू होने चाहिए, अमूमन 10 और 11 तारीख को पहली बड़ी कंपनी के नतीजे आते हैं, वो नतीजे थोड़े से अच्छे रह सकते हैं, उम्मीद ये की जा रही है। क्योंकि बीच में जब AI कंपनीज ने कहा कि हमें ज़रूरत तो पड़ेगी ही, ये जो कन्वेंशनल कंपनीज हैं जिनके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा AI कंपनीज ने भी कहा कि हमें अपनी गति को जो है वो धीमी करने की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि ऑटो और IT दोनों में एक अगर 3 से 5 साल का टाइम होराइजन लेकर के चलें तो एक बेहतर विकल्प है। लेकिन इनमें जो मेरे लिए एक जो पहला पसंद आएगा वो मेटल सेक्टर होगा।
0: लेते अगली खबर। भारत के इस वर्ष दिसंबर तक कम से कम 3 और देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते संपन्न करने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि कनाडा और रूस सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौतों पर बातचीत चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
3: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement. The agreement's negotiations are still ongoing, although we'd like to believe that both the sides have reached a plateau beyond which giving or taking might be very, very difficult. But maybe if there are rooms to operate from, both sides would do it.
0: So, briefly, आप जैसा भी पूछ रहे थे मेरे co-anchor, उसी से जुड़ी ये स्टोरी है जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हैं, और जैसा इन्होंने कहा कि इंडिया EU डील एक परफेक्ट एग्जांपल है परफेक्ट डील की, आपको लगता है कि जो इसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात हो रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है?
1: दो पहलू हैं, एक हमारा जब हम मुक्त व्यापार समझौता करते हैं और एक हमारा निवेश संवर्धन समझौता करते हैं। ये जो आज वित्त मंत्री निर्मला जी ने जो बात कही है वो निवेश संवर्धन के ऊपर बातचीत की है, और देखिए उसमें जो हमारा पुराना जो बना हुआ था उसमें काफ़ी बदलाव किया जा रहा है, और कोशिश ये है कि उसमें विवाद कम से कम हो ताकि निवेशकों को एक एक सुरक्षित और एक निश्चित करने वाला माहौल मिले।
4: राइट, एंड द नेक्स्ट कॉलर इज रत्नाकर फ्रॉम मुंबई। रत्नाकर जी
5: हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि जब भी शेयर मार्केट में हम हमारे स्क्रिप्ट खेल करते हैं तभी जो कुछ उसमें अमाउंट आती है उसमें से इनकम टैक्स जो आता है वो कट होता है क्या, कितना इसके ऊपर टैक्स

0: कट होता है क्या और वो है और आने वाले समय में ऑयल के शेयर कैसे रहेंगे
1: रत्नाकर जी अगर आपने बेचा है कोई भी शेयर और अगर आपको मुनाफा हुआ है तो आपके AIS में वो दिखेगा फिर आपको जब आप उस पर कैपिटल गेन जो है वो अलग से पे करेंगे आपके पास जो बिक्री के बाद पैसा आता है आपके खाते में उसमें STT जरूर कटा हुआ होता है STT सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जो है बाकी कैपिटल गेन आपको अलग से उसका भुगतान करना पड़ता है। दूसरा आपने प्रश्न पूछा कि तेल कंपनियों के शेयरों की क्या स्थिति होगी। देखिए जो भी तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनके शेयरों में आप थोड़ी तेजी देखेंगे जब कभी भी कच्चा तेल ऊपर जाएगा और अभी अगर मैं गलत नहीं हूं तो $100 प्रति बैरल के ऊपर भाव जो है वो बने हुए हैं लेकिन जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके लिए शायद अच्छी खबर नहीं रहेगी।
2: जैसा हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI की नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है, कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर पर है और खाद्य मुद्रास्फीति पर चिंता बनी हुई है। समिति 3 दिवसीय बैठक के अंत में निर्णय की घोषणा से पहले मुद्रास्फीति के आउटलुक और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। रेपो दर में आखिरी बढ़ोतरी फरवरी 2023 में हुई थी जब RBI ने दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। इसके बाद 2023-24 के दौरान दर में कोई बदलाव नहीं किया गया और 2025 में दर में कटौती का चक्र शुरू हुआ। वर्तमान में नीतिगत रेपो दर 5.25% है। जैसा कि आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आशा है कि कल कटौती बढ़त होगी 25 आधार अंक।
1: जी ये इसलिए भी है क्योंकि महंगाई दर में बढ़ने का सिलसिला बना हुआ है तो शायद हमें उसका असर नीतिगत ब्याज दर पे देखने को मिलेगा।
3: And how much does the the Fed kind of sets the template for that?
1: See, Federal Reserve is always a template for many of the developing economies and also the emerging markets. So when the Federal Reserve is increasing the rate, that is giving a signal that the global inflation is also on the rise. Right. So that could be one of the reason why RBI is also talking about that.
2: अब चलते हैं एशियाई बाजारों की ओर। एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो वहां पर आज बढ़त का रुख था। ताइवान का ताएक्स 2.5% उछल गया, जापान के निकेई 225 सूचकांक में 2.4%, सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.5% और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.3% की वृद्धि हुई। इस बीच चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार आज बंद थे।
3: एंड मीनवाइल वी आर जॉइन इन बाय योर कॉलर फ्रॉम असम, शुक्रत लिम्बो, वेलकम।
4: सर गुड इवनिंग सर।
2: जी जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए।
4: सर मेरा प्रश्न ये है कि सर NPS में जो सरकार द्वारा कोई भी स्कीम में NPS में लगाया हुआ है सर, तो वो सरकार द्वारा लगाया हुआ है तो हम उसको स्कीम चेंज करने से हमें फायदा है या उसी सरकार द्वारा लगाया हुआ स्कीम में रहने से फायदा है, मेरा प्रश्न यही है।
1: नहीं बिल्कुल, आप साल में एक बार बदल सकते हैं और आप तय कर लीजिए कि आपको ज्यादा सुरक्षित माध्यम अपनाने हैं या फिर आप शेयर में पैसा रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है।
2: और एक इम्पॉर्टेंट खबर, नई परचेंट डिस्काउंट रेट MDR प्रणाली इस महीने की 15 तारीख से लागू हो जाएगी। नए ढांचे के अंतर्गत ₹2000 तक के UPI लेन देन पर MDR शून्य होगा। छोटे व्यापारी इस चिंतन में होंगे कि क्या उन्हें अपने मौजूदा QR कोड को अपग्रेड करने या बदलने की ज़रूरत है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के अनुसार ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मौजूदा QR ढांचा सामान्य रूप से कार्य करता रहेगा। व्यापारियों को अपने वर्तमान भौतिक QR स्टैंड या साउंड बॉक्स को बदलने, फिर से पंजीकृत करने या संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना किसी रुकावट के दुकानों पर वर्तमान में प्रदर्शित सभी UPI QR कोड पेमेंट को प्रोसेस करते रहेंगे। NPCI ने स्पष्टीकरण दिया है कि व्यापारी पहले की तरह ही अपनी मौजूदा व्यवस्था के द्वारा ही ग्राहकों से राशि प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी बैंक शाखा में जाने की, QR कोड बदलने की या अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
3: Global crude oil prices declined today as exports from West Asia increased and G7 nations pledged to boost supplies. Brent crude was trading 0.4% down at $101.88 per barrel. West Texas intermediate crude was trading 1.4% lower at $89.78 per barrel at the time of writing this report.
2: उधर भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज मामूली बढ़त से 1,48,198 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 1.5% के उछाल से 2,24,157 रुपए प्रति किलो पर थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए शिशिर और हमारे श्रोताओं को आपने

0: बहुमूल्य जानकारी दी।
1: धन्यवाद।
2: थैंक यू फिशर जी। एंड बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस, द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज, सेंसेक्स एड्स ओवर 450 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 22,550, इंडिया एंड स्विट्जरलैंड इंक सेवरल अग्रीमेंट्स टू प्रमोट कोऑपरेशन इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज, मोबिलिटी सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड एशियन स्टॉक मार्केट्स एंड इन द पॉजिटिव टेरिटरी। दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा फ्रॉम द एंटायर टीम हियर। गुडबाय।
0: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: திரைகானம் கேட்டீர்கள். இனி தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई. इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया. ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है. यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है. इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे.
1: राष्ट्रपति पहामलान ने कहा कि यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया. राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं. उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे. घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुरजेटो अब्लाक्वा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है. घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के अंकरा रिसेट के दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी. निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं. आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है. सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था. आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है. न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है. चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागिल को दिया जाएगा. स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की. तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है. पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागिल ने चेनरे रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया. भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा. मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी कनक क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा. अगले 4 मैच 9, 11, 14 और 17 अक्टूबर को

0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहामलान ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटे अबलाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के अकरा रीसेट दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयाद ममादोव पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

முற்றம் வந்தி வேற யாரம்மா, நதி வெள்ளம் காய்ந்து விட்டா.

0: இதுவரை நினைவில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இனிய திரைப்பட பாடல்கள் கேட்டு ரசித்தீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திருக்கே டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करें।

0: राष्ट्रपति पहामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुजेटे अब्लाकुआ के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा के अकरा रीसेट दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज एमवी रोयाद ममादोव पर हुए हमले में दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल तीन भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरेथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम की प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चाइना ओपन टेनिस में सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान डेनिल मेदवेदेव के अयोग्य घोषित होने के बाद नोवाक जोकोविच फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला 5वीं वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलेक्स डी मिनोर से होगा। महिला टेनिस में अमेरिकी खिलाड़ी कोको गॉफ ने चीन के खिलाड़ी सुन शिन रान को 7-5, 6-1 से हराकर अंतिम 16।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। India and Switzerland yesterday signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between PM Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, PM Modi said, during their meeting, the two sides identified new avenues for defense cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट

0: இதுவரை நெஞ்சம் மறப்பதில்லை கேட்டோம். இனி தொடர்வது செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई. इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया. ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है. यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है. इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे.
1: राष्ट्रपति पहामलान ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया. भारत में राष्ट्रपति पहामलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है. उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे. घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुरजेटे

0: ब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के अक्रा रीसेट दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयात ममादोव पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम की प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष बी एब्राहम। India and Switzerland yesterday signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between PM Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, PM Modi said during their meeting, the two sides identified new avenues for defense cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: President Draupadi Murmu met the President of the Swiss Confederation at Rashtrapati Bhavan yesterday and hosted a banquet in his honor. Welcoming President Parmelin to India, President Murmu said that India and Switzerland enjoy warm and cordial relations based on the shared values of democracy and the rule of law. Vice President C.P. Radhakrishnan also attended the banquet. The stage is set for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, along with 1 Lok Sabha constituency in Assam. Polling for all 6 seats will be held today, while counting of votes will take place on Friday. The assembly seats going to polls are Madurantakam and Dharapuram in Tamil Nadu, Tattanchavadi in Puducherry, and Reginagar and

0: இதுவரை பண்டிட் பிரிஜ் நாராயணன் அவர்களின் சரோடு இசை கேட்டோம். இனிய ராகத்தினை தொடர்ந்து ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தின் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहामलान ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकोर जेटे अब्लाक्वा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयाद ममादोव पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और

तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यमन सरकार ने हुती के ठिकानों पर बड़ा सैन्य हमला शुरू किया है। सरकारी बलों का दावा है कि उन्होंने लाल सागर तट पर अहम रणनीतिक ठिकानों पर के आसपास बढ़त हासिल की है। यमन की सशस्त्र सेनाओं ने कहा कि उन्होंने सादा, अलजोफ, ताइज और पश्चिमी तट पर हुती ठिकानों पर 1000 से अधिक हमले किए। यमन सरकार की ओर से शुरू किए गए इस हमले में सऊदी अरब की ओर से बड़ी सैन्य मदद दी जा रही है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पाहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयाद मम्मा 2 पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और चालक दल के कई सदस्य घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चालक दल में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी।

0: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टा चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। वोटों की गिनती शुक्रवार को की जाएगी। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डिसेरोथ, पीटर हेगमन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगमन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। India and Switzerland have signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas, including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks yesterday, PM Modi said, during their meeting, the two sides identified new avenues for defense cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: President Draupadi Murmu met the President of the Swiss Confederation at Rashtrapati Bhavan and hosted a banquet in his honor yesterday. Welcoming President Parmelin to India, President Murmu said that India and Switzerland enjoy warm and cordial relations based on the shared values of democracy and the rule of law. The two leaders expressed confidence that this visit will contribute to further strengthening relations between the two countries. Vice President C.P. Radhakrishnan also attended the banquet. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Himachal Pradesh from today. During the visit, President Murmu will attend the convocation ceremony at AIIMS Bilaspur as the chief guest and confer degrees to trainee doctors. Defence Minister Rajnath Singh will mark the delivery of the 2000th Aero engine by Hindustan Aeronautics Limited, Koraput Division in Odisha today. The Defence Ministry said that the event will mark nearly 6 decades of HAL Koraput's contribution to India's aerospace and defence manufacturing capabilities and operational readiness of the armed forces. The event will also highlight the establishment of a second production line for Shakti engines with an investment of over 200 crore rupees. The additional capacity will support the growing requirements of indigenous helicopter platforms, including the Dhruv Advanced Light Helicopter and Prachand Light Combat Helicopter. By-elections for 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam will be held today. The 5 assembly seats going to polls are Madurantakam and Dharapuram in Tamil Nadu, Tattanchavadi in Puducherry and Rejinagar and Nandigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat going to polls is Nagaon in Assam. The counting of votes will be taken up on Friday. Indian Embassy in Romania has said that 2 foreign nationals have been killed and several crew injured in an attack on commercial vessel MV Royad Mamadov in the Black Sea. In a social media post, the embassy said the 3 Indian nationals among the crew members are safe. It said the mission has spoken to them and one of them has been injured and is receiving medical attention. The embassy further stated that